FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी समाचार थोड़ी देर में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के

0: बीच मुकाबला एक एक गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सबसे पहले लीजिए सुनिए समूह स्वर में ये मातृवंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख है स्वामी निखिलानंद का।
1: मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उदित होता है कि क्या आज के जीवन में धर्म की कोई उपादेयता है। भारत में, जो कि एक धर्म प्राण देश है, हम आए दिन धर्म के नाम पर खून खराबी का समाचार पाते हैं। सांप्रदायिक उन्माद मानो रोजमर्रे की वस्तु हो गई है। धर्म के नाम पर तनिक सी उत्तेजना सांप्रदायिक झगड़े का रूप ले लेती है, पर यदि हम तनिक गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि इन समस्त धार्मिक उन्मादों तथा हत्याओं के मूल में धर्म नहीं है, वरन धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति ही समस्त झगड़ों का कारण होती है। संसार का कोई भी सच्चा धर्म खून खराबी की शिक्षा नहीं देता। एक बाल का कथन कितना सटीक है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। प्रत्येक धर्म मानव मात्र को प्रेम की शिक्षा देता है, उसी एक परमपिता परमेश्वर के पास जाने की प्रेरणा देता है, जो समस्त आनंद शांति और सुख का उत्स है। श्री रामकृष्ण इसे ही अपनी सरल सहज भाषा में समझाते हुए कहते हैं, एक तालाब के चार घाट हैं। एक में हिंदू पानी पी रहा है, कहता है जल। दूसरे में मुसलमान पानी पी रहा है, वह कहता है पानी। तीसरे में ईसाई पानी पी रहा है, वह कहता है वाटर। जल एक ही है, पर लोग उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उसे ही हिंदू भगवान कहते हैं, मुसलमान अल्लाह और ईसाई गॉड। अतः सच्चा धर्म कभी भी हत्या और खून खराबी का संदेश नहीं देता। जहाँ भी धर्म के नाम पर ऐसी घटना होती है, उसका कारण धर्म नहीं, वरन धर्म का लबादा ओढ़े स्वार्थ संकीर्णता तथा क्षुद्रता की राजनीति है। भारत में धर्म को व्यापक अर्थों में लिया गया है। महाभारत के शांति पर्व में धर्म की व्याख्या में कहा गया है, धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। जो धारण करे वही धर्म है, जो प्रजा का धारण करे, समाज और राष्ट्र का धारण करे, वह धर्म है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द धर्म का पर्यायवाची नहीं है। रिलीजन से तात्पर्य होता है कि किसी धार्मिक संस्था विशेष के कतिपय नियमों और सिद्धांतों का पालन। अंग्रेजी में यदि कोई शब्द है जिसे धर्म का पर्यायवाची कहा जा सके तो वह इंटीग्रेशन है, जिसका सामान्य अर्थ है संगठन अथवा एकीकरण। अतः धर्म वह है जो व्यक्तिगत समाजगत तथा राष्ट्रगत जीवन को संगठित करे, एकता के सूत्र में पिरोए। यहाँ किसी भी प्रकार की संकीर्णता क्षुद्रता तथा स्वार्थपरता के लिए गुंजाइश नहीं है, और जहाँ ऐसी मनोवृत्ति कार्यरत हो वह अन्य चाहे जो कुछ भी हो पर धर्म नहीं है। यह भारत ही है जिसने ऐसे उदार भाव का पोषण किया है तथा वसुधैव कुटुंबकम की सारी वसुधा ही अपना कुटुंब है का नारा सारे विश्व को दिया है। उसने संसार के विभिन्न देशों तथा जाति के शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी है तथा देता रहा है। आज आवश्यकता है धर्म के इस उदार भाव को ग्रहण करने की और उसे जीवन में उतारने की। सर्वधर्म समवाय का सिद्धांत ही विश्व के आपसी तनाव को दूर कर सकता है।
0: अभी आपने सुना चिंतन। आलेख था स्वामी निखिलानंद का। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर है वाणी जयराम का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मुख्य गायक स्वर वाणी जयराम का था, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:50 पर हम सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का वक्त होगा हर सुबह की तरह 7:20 का।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे। भोपाल केंद्र से ही रिले करेंगे एक विशेष कार्यक्रम सुबह 10:15 से 11 बजे तक। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुबह 9 बजे, 11 बजे और दोपहर 2:30 पर।

हमारे युवा श्रोता अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं शाम 5 बजे। शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

शाम 6 बजे सुनिएगा कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट, सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 पर।

हेलो ग्राम सभा, ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 8 बजे सुनिएगा पॉप म्यूजिक। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे रात 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। FM बैंड 101.3 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। इस वक्त सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत।

शर्मिली फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, नीरज के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। लीजिए सुनिए

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए सुनिए कन्यादान फिल्म का ये गीत। शब्द रचना नीरज की है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

शकील बदायूनी का लिखा गीत अब सुनिए हेमंत कुमार की आवाज़ में। संगीत भी हेमंत कुमार का है, फिल्म का नाम है 20 साल बाद।

इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सिकल सेल एनीमिया के विशेष कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश प्रवास के दूसरे दिन आज जन स्वास्थ्य और जनजातीय कल्याण को समर्पित रहेगा। राष्ट्रपति खंडवा जिले की पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आज अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। पेश है संवाददाता हीरालाल लोंगरे की एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज ओमकारेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम का आयोजन सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से किया जा रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अपने संबोधन में सिकल सेल रोग की रोकथाम, समय पर जाँच, उपचार और जन जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालेगी। साथ ही जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य संरक्षण और उनके समग्र विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संदेश देंगी।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति ने बैतूल में आदिवासी समाज का सशक्तिकरण विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। जबकि यात्रा के अगले चरण में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गाँव का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। वे 22 जून को कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है, वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में भी सफलता प्राप्त की है। पिछले 12 सालों में भारत में हुए विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: कोलकाता का मशहूर रेड रोड 21 जून को 12वें राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष की थीम स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। उत्सव के उपलक्ष्य में कल 12 विशेष डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता में भव्य ड्रोन शो के साथ हुगली नदी पर 500 नावों में सामूहिक योग का अनूठा प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप

0: जाधव ने कहा कि यह आयोजन भारत के शाश्वत ज्ञान का वैश्विक आंदोलन है। इस वर्ष दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में भी तैयारियां जोरों पर हैं। नीमच के लायन डेन में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां सुबह 6:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। शिवपुरी जिले के पोलो ग्राउंड और डिंडोरी जिले के शिक्षण संस्थानों में व्यापक जनभागीदारी के साथ सामूहिक योगाभ्यास की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। इस किस्त के साथ फरवरी 2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना के तहत कुल वितरित धनराशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पीएम किसान उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास में कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों और अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय की भविष्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमें नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर प्रदेश को ज्ञान और प्रौद्योगिकी का सशक्त केंद्र बनाना होगा। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास और आवास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संजय दुबे, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एम सेल्वेंद्रम और मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी भी उपस्थित रहे। बात खेल की। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल किया। उरुग्वे की चियारा एपेमनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किए। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव के बीच लोग मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के जिले में कल बारिश के बाद आज मौसम विभाग ने राजगढ़ और अशोकनगर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कल पुरानी कृषि मंडी में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में आगामी पीढ़ियों के स्वास्थ्य हेतु प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील की। गुना जिला कलेक्ट्रेट में गुलाब की उन्नत खेती और पॉली हाउस प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर चालू वित्तीय वर्ष में 100 एकड़ नवीन पॉली हाउस का लक्ष्य रखा गया। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा के लिए जिले के 32 केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाओं की कल समीक्षा की। ग्वालियर जिले में 27वें वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेले में शहीद सुखदेव के वंशज अनुज थापर और शहीद अनूप कुमार के माता पिता को उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने सम्मानित किया। डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल बैठक लेकर भारत पशुधन पोर्टल पर पशुपालकों के आधार अपडेट और टीकाकरण प्रविष्टियां 20 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। भोपाल नगर निगम द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु 84 जल नमूनों की जांच की गई और पाइपलाइनों के 35 लीकेज सुधारे गए। पन्ना जिला पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में छत्तीसगढ़ से परमेश्वर कंवर को गिरफ्तार कर पीड़ित के बैंक खाते से ठगी के 2,47,000 रुपए फ्रीज किए। नीमच जिले में शासन आपके द्वार अभियान के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा सहित सभी जिला अधिकारी टीम भावना का संदेश देते हुए बस से ग्राम कंजारडा चौपाल पहुंचे। और जबलपुर जिले के बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच अंतिम चरण में है। जस्टिस संजय द्विवेदी आयोग के समक्ष शिकायतकर्ताओं ने स्वतंत्र तकनीकी जांच न होने पर सवाल उठाए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी

द्रौपदी मुर्मू आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सिकल सेल एनीमिया के विशेष कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
2: नमस्कार बालाघाट।

नमस्कार, सुप्रभात और बहुत बहुत स्वागत आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट के आज के अंक में। आज आपके साथ मैं हूं निशांत। नाम और शोहरत हमेशा ही व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका बड़ा नाम हो, समाज में उसकी इज्जत हो, उसकी एक साफ सुथरी पहचान लोगों के बीच हो। यह हर किसी की चाहत होती है और इसे पाने के लिए व्यक्ति हर संभव कोशिश भी करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ सभी को नसीब नहीं होती। लेकिन ये असंभव भी नहीं है। इन्हें पाकर ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बेहद मेहनत की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ ज़रूरत होती है काम के प्रति ईमानदारी और लगन की। हमारा आज का विचार भी ऐसा ही संदेश दे रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। ये प्रेरणादायक कथन अपने आप में संदेश देता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुणों के महत्व का। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना आसान नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो या अपने पेशे में यानी कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना चाहता हो, दोनों ही चीज़ों में उसे कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक मजबूती भी आवश्यक होती है। रास्ते की कठिनाइयों, चुनौतियों और जोखिम को देखकर जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता और लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे कार्यक्षेत्र में भी अनेक बाधाएं आती हैं। सफलता पाने के लिए हमें अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और पॉजिटिव थिंकिंग भी आवश्यक होती है। जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, वे ही अंत में सफल होते हैं। यह सुविचार हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना मेहनत और संघर्ष के प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और चुनौतियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। ये विचार हमें प्रेरित करता है कि सफलता का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति, परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर हर व्यक्ति अपने जीवन के शिखर तक जरूर पहुंच सकता है। कार्यक्रम में अब बारी एक प्यारे से गीत की।

जून को घटित हुई। सन 1862 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास करके संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा पर रोक लगाई। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों और उनके अधिकारों के संघर्ष के लिए शिवसेना की नींव रखी थी। बौद्धिक संपदा कानून यानी IPR पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता हुआ साल 1996 में। जर्मनी के कोलोन शहर में G8 की शिखर बैठक प्रारंभ हुई 19 जून 1999 में। साल 2003 में फिनलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एनली जॉटिन मॉन्की ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। फोर्ब्स पत्रिका ने ओफ्रा विन्फ्रे को दुनिया की 100 ताकतवर हस्तियों में पहला स्थान दिया आज ही की तारीख में साल 2005 में। 2008 में उत्तराखंड सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थगित किया। ये परियोजनाएं थीं 480 मेगावाट की पाला मनेरी और 380 मेगावाट की भैरोधारी परियोजना। आज की तारीख से जुड़ी कुछ खास शख्सियत पर बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक गीत।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 4258-36824।
2: चलिए बातें करते हैं आज की तारीख से जुड़ी खास शख्सियत की। 19 जून 1931 में जन्म हुआ उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का। माधवराव सप्रे का जन्म हुआ 1871 में आज ही की तारीख में। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे। 1970 को जन्मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, म्यांमार की प्रमुख राजनेता और नोबेल पुरस्कार विजेता

आंग सान सू की का जन्म हुआ 1945 में। 1947 में जन्म हुआ प्रसिद्ध भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी का। एक खास शख्सियत है सुभाष मुखोपाध्याय, जिनका निधन हुआ 19 जून 1981 में हुआ। वे भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। ये थी कुछ खास शख्सियत की जानकारी जो आज की तारीख से जुड़ती हैं। और अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, निशांत के साथ। 19 जून को मनाए जाने वाले दिवस की बात करें तो आज है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस, जो विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ युद्ध में होने वाली यौन हिंसा को रोकने के लिए, जागरूकता के लिए मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस भी आज ही की तारीख को मनाया जाता है। सिकल सेल एक आनुवंशिक रक्त विकार है और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी है जिसमें विकृत रक्त कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में फंस जाती है, जिससे शरीर के अंगों में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन रुक जाती है और इसके कारण शरीर में रक्त की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। भारत में ये बीमारी विशेष तौर पर आदिवासी आबादी में ज़्यादा होती है। भारत सरकार ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल बीमारी को जड़ से ख़त्म करना। ये थी कुछ बातें विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस की। अब सुनते हैं एक और गीत।

करगन नमस्कार। बालाघाट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण विश्व में मनाए जाने वाले दिवसों में से एक है विश्व एथनिक दिवस। ये दिवस विश्व संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है और हर साल 19 जून को मनाया जाता है। विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री विद्या बालन को एथनिक उत्पादों की ऑनलाइन कंपनी craftsvilla.com ने इस दिवस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये थी थोड़ी सी बातें विश्व एथनिक दिवस की। अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम में वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। चलते चलते हम आपको बताएं कि आज के अंक में हमारे साथ तकनीकी सहयोगी थे मुकेश कुमार कोष्टा और राकेश वर्मा। प्रस्तुति थी कुमार विक्रम सिंह की और कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं था निशांत। तो अपना और अपनों का रखिए ख्याल। इसी बात के साथ अब कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट के आज के अंक से निशांत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार
1: नमस्कार बालाघाट।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। FM बैंड 101.3 MHz पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
5: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
5: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।

0: Vinci, we have Canis, Evian, Paris. من ایسه صدر دوره کلیه سواگت کرده. فرانس و بارک کی دوستی امرائی.
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस

0: वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वही नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM बैंड 101.3 MHz पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए भूपिंदर सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। शायर हैं कतील शिफाई।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम FM बैंड 101.3 MHz पर। यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

आज के इस अंक में हम नई नई जानकारियों के साथ आपके मनोरंजन के लिए लेके आए हैं कुछ गीत संगीत। मैं हूं आपकी रेडियो सखी नीना उरकुड़े, तो स्वीकार करें मेरा स्नेही नमस्कार। सखियों, गर्मी तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पहले 7 जून से मानसून आ ही जाया करता था, लेकिन अब तो मानसून का नामो निशान तक ही देखने को नहीं मिल रहा। सखियों, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? इन सभी के लिए शायद हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। पेड़ों की कटाई पर भी कोई रोक नहीं है। जब पर्यावरण असंतुलित होगा तो कहाँ से हमें उसका परिणाम अच्छा मिलेगा? हर वर्ष हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, अपने पर्यावरण का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। हम पेड़ तो लगा लेते हैं, लेकिन शायद उसका ध्यान नहीं देते। तो सखियों, अपनी इस गलती को हम सुधारेंगे और अपने पर्यावरण का ध्यान रखना हमारा पहला कर्तव्य होगा। सखियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग आधी आबादी आज भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हमारे देश की प्रगति का सीधा रास्ता खेतों से होकर गुजरता है, परंतु आधुनिक दौर में फसलों की अधिक पैदावार हासिल करने की होड़ में रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग बढ़ा है। इसके कारण हमारी धरती माँ की सेहत बिगड़ रही है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लगातार कम होती जा रही है। सखियों, इसी गंभीर समस्या के समाधान के रूप में भारत सरकार ने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। सखियों, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर खेत बचाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रामसिया गांव से किया गया। सखियों, यह मज़ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों किसान की तकदीर बदलने और धरती को बंजर होने से बचाने के लिए शुरू किया गया है। व्यापक जन आंदोलन है। यह अभियान मुख्य रूप से मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ, किसान बचाओ के मूल मंत्र पर अवधारणा पर आधारित है। सखियों, खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य बहुव्यापी है, जिसके मुख्य बिंदु है मृदा स्वास्थ्य की रक्षा, कृषि लागत में कमी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, टिकाऊ कृषि, ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करना जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जमीन उपजाऊ बनी रहे। सखियों, इस देशव्यापी अभियान से भारतीय किसानों को कई सीधे लाभ मिल रहे हैं, लागत में बचत और मुनाफा, सरकारी योजना का एकीकरण, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा। सखियों, किसी भी राष्ट्रीय अभियान की सफलता केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं होती। भारत के परंपरावादी खेती को छोड़कर अचानक आधुनिक या प्राकृतिक खेती को अपनाना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सखियों, खेती बचाओ अभियान 2026 भारतीय कृषि के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता की उत्पादक कृषि, सशक्त किसानों और दीर्घकालीन राष्ट्रीय स्मृति की मूल आधारशिला है। सखियों, यदि हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी देश का अन्न भंडार सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को रासायनिक जहर से मुक्त शुद्ध भोजन मिल सकेगा। सखियों, हम सभी का यही दायित्व है कि इस राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाएं और अपनी धरती माँ के स्वास्थ्य की रक्षा करें।

0: सखियो गीत के बाद पुनः आपका स्वागत अभिनंदन। सखियो बदलती जीवन शैली खान पान में बदलाव से इसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमें स्वस्थ और फिट रहने के लिए हमें योग और व्यायाम को अपनाना पड़ेगा। तो सखियो आज हम 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता और वार्ताकार है रोशनी सचदेवा, जिनसे बात की है मैं यानी नीना उरकुड़ ने। तो चलिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। योग भारत की प्राचीन और अमूल धरोहर है जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रही है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। तो श्रोताओं, आज हमारे बीच एक अनुभवी योग शिक्षिका उपस्थित है। हम उनसे योग के महत्व, वर्तमान जीवन शैली में इसकी उपयोगिता और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक की योग अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। मैडम, आपका महिला जगत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय?
1: पहले तो मैं आपको बताऊं, आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोशनी सचदेव हूं और मैं योगा करवाती हूं। मेरे से कई बहनें योग से जुड़ी हुई हैं और दिन ब दिन स्वस्थ होते जा रही हैं और मस्त होते जा रही हैं।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि योग क्या है।
1: योग मन शरीर आत्मा का एक अद्भुत संगम है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत शैली है। तो योग का मतलब भी है जोड़ना
0: जी।
1: और जोड़ना किसको है? शरीर को श्वासों से जोड़ना है, श्वास को मन से जोड़ना है और मन को ईश्वर से जोड़ना है। ये योग है। जब जुड़ाव होता है तो हम पूर्ण हो जाते हैं और जब पूर्ण होकर कोई काम करेंगे तो क्या होगा? आनंददायक होगा और संतुष्टि वाला होगा
0: जी।
1: जहाँ आनंद और संतुष्टि है वहाँ जीवन परिपूर्ण है और ये ही योग है।
0: ये तो आपने योग क्या है इसके बारे में हमें जानकारी दी है, तो आज के समय में योग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
1: देखिए, आज के समय में हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं बहुत बढ़ गई है
0: जी।
1: और देखा देखी वाला वातावरण हो गया है जिससे पैसा कमाना अति आवश्यक हो गया है
0: जी।
1: जिससे कंपटीशन बढ़ गई है, दिन रात भागा दौड़ी और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं जिससे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य असंतुलित हो रहे हैं
0: जी जी।
1: असंतुलित खान पान हो रहे हैं। तो इसीलिए ही मन की शांति, स्वस्थ जीवन, संतुलित खान पान और कंट्रोल के लिए योग की अत्यंत आवश्यकता है
0: जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि योग की बहुत आवश्यकता है, पर लेकिन आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें चिंता बहुत ज्यादा, तनाव बहुत ज्यादा हो रही है, तो तनाव और चिंता कम करने के लिए योग की क्या भूमिका है?
1: जैसे कि दिन रात वाली भाग दौड़ वाली जिंदगी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: इसको तनाव और चिंता को कम करने के लिए योग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: क्योंकि योग मन शरीर बुद्धि आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति करवाता है
0: जी।
1: व्यक्ति को परिवार से जोड़कर परिवार में खुशहाली बनाता है। परिवार समाज के प्रति संवेदनशील कर समाज में सद्भावना बढ़ाता है और समाज राष्ट्र की एकता के सूत्र बनते हैं
0: जी।
1: और ऐसे राष्ट्र विश्व में शांति बनाते हैं। योग शारीरिक
0: जी
1: मानसिक संतुलन बनाकर मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और नर्वस सिस्टम
0: जी
1: को रिलैक्स करता है। इसीलिए ही भागदौड़ वाली जीवन शैली में तनाव और चिंता को कम करने में योग करना बहुत ही जरूरी है
0: जी। यहाँ हम आज योग पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको योग के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो कुछ भी उटपटांग से योगा अभ्यास करते हैं, तो हमें योग करने के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए?
1: ये बात तो आपने सही बोले करके कि योग करने से पहले अपने को सावधानी बरतना बहुत जरूरी
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: क्योंकि योग शुरू करने से पहले तो हमें सबसे पहले बहुत सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए
0: जी, जी।
1: पर्याप्त पानी पीना चाहिए
0: जी।
1: और खाली पेट योग करना चाहिए और अपनी शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही आसन करने चाहिए और कोई भी आसन करते हुए हमारे शरीर में दबाव नहीं पड़ने चाहिए।

0: आइए और किसी अच्छे योग ट्रेनर के साथ ही योगा करना चाहिए ताकि हमें सही मार्गदर्शन मिल सके तो हम बहुत अच्छे से
1: जी
0: योग कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, योग के साथ साथ प्राणायाम जुड़ा हुआ है, तो प्राणायाम का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है?
0: प्राणायाम का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्राणायाम दो शब्दों से बना है,
1: जी
0: प्राण प्लस आयाम, है ना। प्राण यानी जीवन ऊर्जा और आयाम यानी नियंत्रण। प्राणायाम मतलब श्वासों की क्रिया। जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारी जीवन ऊर्जा को नियंत्रण करता है,
1: जी
0: तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और फेफड़ों को मजबूत कर शारीरिक मानसिक संतुलन स्थापित करता है।
1: जी जी
0: तो मैं तो कहूंगी कि सभी को प्राणायाम करना चाहिए और अपने जीवन में स्वस्थ जीवन जीना चाहिए।
1: ये तो आपने हमें प्राणायाम के महत्व के बारे में अभी आपने हमको जानकारी दी, तो मेरा कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों को कौन-कौन से योगाभ्यास करना चाहिए?
0: आज के विद्यार्थी बहुत ही तनाव में रहते हैं, एकाग्रता कम है, तो उनके लिए एकाग्र स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए और तनाव को कम करने के लिए कुछ योग क्रियाएं हैं।
1: जी
0: वो इस प्रकार है कि जैसे पद्मासन करें, पशुमुत्तासन करें, वृक्षासन करें, सूर्यंगासन करें, भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार उच्चारण करें, और विद्यार्थियों को कम से कम अपने को 15 से 20 मिनट देने चाहिए अपने शरीर के लिए,
1: जी
0: ताकि उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके, अपने पढ़ाई में एकाग्र होकर के ध्यान से पढ़ाई करें और स्वस्थ भी रहें।
1: योग और प्राणायाम में क्या अंतर है?
0: योग और प्राणायाम में एक दूसरे के ये पूरक ही हैं, क्योंकि योग एक व्यापक जीवन शैली है, विज्ञान
1: जी
0: और दर्शन है,
1: जी
0: जबकि प्राणायाम उस योग का विशिष्ट हिस्सा है।
1: जी
0: योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अभ्यास शामिल है, जबकि प्राणायाम केवल श्वास प्रश्वास के नियंत्रण पर केंद्रित होता है।
1: जी जी
0: प्राणायाम हमारे आंतरिक अंगों को स्वस्थ करता है, साथ में बाह्य अंग भी स्वस्थ होते जाते हैं।
1: जी
0: इसका मतलब है प्राणायाम भी शारीरिक मानसिक संतुलन को स्थापित करता है।
1: जी अभी आपने इसके पहले विद्यार्थियों को कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए इसके बारे में बताया, तो बुजुर्गों के लिए कौन कौन से योगासन होने चाहिए?
0: भाई बुजुर्गों के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहला सुख निरोगी काया,
1: जी
0: बुजुर्गों को स्वस्थ लचीला और ऊर्जावान बनाए रहने के लिए ऐसे योगासन करने चाहिए जिसमें ज्यादा शारीरिक तनाव न हो,
1: जी
0: जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, भद्रासन, शवासन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम विशेष फायदेमंद होते हैं।
1: अच्छा
0: जैसे कि बुजुर्गों को में देखा गया है कि उन्हें जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द ये सब बने रहते हैं, तो उनके लिए चेयर योगा करना चाहिए,
1: अच्छा
0: कुर्सी पर योगा करना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम कुर्सी पर बैठ के करना चाहिए, तो वो स्वस्थ रहेंगे और ऊर्जावान बने रहेंगे।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, तो इसका उद्देश्य क्या है?
0: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व भर के लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है,
1: अच्छा
0: क्योंकि आजकल लोग भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप को भुला बैठे हैं, अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, अनियमित खान पान कर रहे हैं, अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं और नास्तिक भी होते जा रहे हैं।
1: जी
0: इसलिए विश्व भर के लोगों को योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूक करना है
1: जी
0: और उन्हें एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मैं तो चाहूंगी कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सभी मिलकर के योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कि मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामना भी देना चाहती हूँ।
1: जैसे कि अब वातावरण और खान पान की अगर हम बात करें, तो आज का खान पान बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो आपके विचार से हमारा खान पान कैसा होना चाहिए?
0: आज के वात

0: वातावरण में, खाने की हर चीज में पेस्टराइज है, मिलावटें हैं, जिस वजह से सबके शरीर में बीमारियां आ
1: जी
0: रही है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ रहा है। तो
1: जी
0: इसीलिए मैं चाहूंगी कि हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, मौसमी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, प्रोटीन का सही मिश्रण, पर्याप्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स
1: जी
0: शामिल होने चाहिए ताकि हमारा पाचन तंत्र सही रहे और शरीर में ऊर्जा बनी रहे।
1: जी आप हम सभी जानते हैं कि आज की जो युवा है अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कहीं जिम जाते हैं, योगा करते हैं और योग और व्यायाम को अपना रहे हैं। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: युवाओं को तो मेरा यह संदेश है कि योग कोई तत्कालिक इलाज नहीं है,
1: जी
0: बल्कि एक जीवन शैली है। परंतु आज का युवा जिम जाकर तत्काल रिजल्ट पाना चाहता है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य मिल रहा है, शरीर स्वस्थ रह रहा है, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल रहे हैं
1: जी
0: उन्हें।
1: बिल्कुल सही कहा आप।
0: युवाओं को मेरा संदेश है कि जिम जाएं, वर्कआउट करें, पर अपने जीवन शैली में प्राणायाम को ऐड करें, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी करें, जिससे उनका नर्वस सिस्टम शांत होगा और धीरे धीरे आध्यात्मिक भी बनते जाएंगे। इससे परिवार का, समाज का, देश का, विश्व का, सबको फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल। अब मैं अपने बातों को विराम देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि योग की मदद से नशा छुड़ाया जा सकता है?
0: योग की मदद से नशा छुड़ाया जा सकता है, पर उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी
1: जी
0: कि आज का युवा तनाव और एंजाइटी का शिकार हो रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: जिसमें तनाव को कम करने के लिए नशा करने लगे हैं।
1: जी जी
0: पर योग और प्राणायाम की मदद से नशे की लत को छुड़ाया जा सकता है, बहुत
1: अच्छा
0: अच्छी मदद मिल सकती है,
1: जी
0: क्योंकि योग मानसिक शांति देता है, तनाव कम करता है और प्राणायाम मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर में सुधार करके नशे की लालसा को नियंत्रण करता है। तो योग और प्राणायाम, इनके मेल से नशे को दूर किया जा सकता है। नशा मुक्त करने के लिए प्रतिदिन योग करना बहुत जरूरी है। इस पे मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगी।
1: जी बिल्कुल
0: शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग।
1: बहुत ही खूब कहा आपने। आपने योग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। अब चलते चलते हम आपसे योग के ऊपर कोई गीत सुनना चाहेंगे। गीत हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाए और इस गीत के माध्यम से संदेश दे।
0: गीत सुनाने से पहले मैं एक और श्लोक बोलना चाहूंगी
1: जी
0: कि बीमारी पर खर्च किया गया पैसा मजबूरी है, लेकिन अपनी सेहत पे लगाया गया समय एक शानदार निवेश है। और श्रोताओं को और आपको मैं एक गीत सुनाने जा रही हूं। ए मेरे दोस्तों, कृपया आप

0: आओ अपनाए योगा योगा योगा योगा योगा योगा योगा, ए मेरे दोस्तों अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा योगा योगा योगा योगा योगा योगा, ओ मेरे दोस्तों अपनाए योगा।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार। आपने जो गीत आज यहाँ गाया, हमारे श्रोता ने अवश्य सुना होगा। इस गीत से और इस जानकारी से वो जरूर लाभ उठाएंगे और योग की ओर बढ़ेंगे। तो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आई और हमें इतनी अच्छी जानकारी और इतना प्यारा सा गीत सुनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया, बालाघाट आकाशवाणी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
1: धन्यवाद। सखियो, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में। तो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते हैं और चाहेंगे कि इस दिवस को सफल बनाएं, अधिक से अधिक लोग इस दिन का लाभ उठाएं। तो सखियो, अब हम आज की तारीख की बात करते हैं। और सखियो, आज 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। सखियो, स्वास्थ्य की ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन सखियो कुछ बीमारियां इंसानी जीवन को जन्म से ही प्रभावित करती है। सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल रोग भी ऐसी ही एक खतरनाक अनुवांशिक बीमारी है। इस लाइजन और पीड़ादायक रक्त विकार के लिए हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सखियो, इस वैश्विक अभियान का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के चिकित्सक तंत्र, नीतियां, निर्माताओं और आम जनता का ध्यान इस अदृश्य बीमारी की ओर आकर्षित करना है। यह रोग इंसानी शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ा एक गंभीर विकार है। सखियो, इसके मरीजों को असहनीय दर्द, अत्यधिक थकान, गंभीर एनीमिया, पीलिया और अंगों के खराब होने जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। सखियो, इसके इतिहास की बात करें तो इस वैश्विक दिवस की स्थापना के पीछे एक लंबा संघर्ष है। सिकल सेल रोग से संबंधित ऐतिहासिक प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद 19 जून 2009 को पहली बार विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। सखियो, तब से लेकर आज तक हर साल इस विशेष तारीख पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्योंकि यह बीमारी माता पिता के दोषपूर्ण जीवन के कारण बच्चों में ट्रांसफर होती है, इसलिए इसे रोकने के लिए जागरूकता ही एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है। तो सखियो, अब आप हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार करें नीना और कूड़े का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM बैंड 101.3 MHz पर। यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 9 बजे हैं। विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: बोल बच्चन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, शब्बीर अहमद के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे सखियां सुन सकेंगी अपने फरमाइशी गीत हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नवराई माझी लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग, नवराई माझी नवरा

हवाई ज्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रोचक कोहली की आवाज में, विभू वीरेंद्र पुरी के बोल और रोचक कोहली का संगीत। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और वक्त है एक अंतराल का।

0: अग्निपथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया।

0: और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: कॉकटेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। भाई खुशियों के जो छोटे छोटे पल हमें मिलते हैं उन्हें ही चुनिए, यकीन मानिए इन्हीं से रोशन होती है हमारी दुनिया।
1: जुगनू बन के तू जगमगा जहां।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और दिन भर जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ। अब आज के लिए दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों रहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृग्या के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

मिथुन की कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना। और ये फिल्म भी

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों, डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: तुझे सलाम मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे
2: सलाम। कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम,
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
2: हाँ, यू आर इन लव।
1: वी आर इन लव।
0: दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म

786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची,

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी थोड़ी देर में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: के 10 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी, आलेख प्रदीप सिंह चौहान का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। सीहोर जिला इन दिनों प्री मानसून की बारिश से तरबतर नजर आ रहा है। बारिश के चलते भीषण गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि इससे पहले सीहोर में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते दिनों सीहोर जिले के भैरुंदा में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना 4 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमा सानी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किया। पिछले दिनों सीहोर के क्रिसेंट ग्रीन गार्डन के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के रहटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की और कलश यात्रा में शामिल हुई। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने सीहोर में सीवन नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। नदी में फैली गंदगी और जलकुंभी को हटाने के लिए उन्होंने घाट पर श्रमदान भी किया। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान, गेहूं उपार्जन, पेयजल आपूर्ति और जिले में किए गए नवाचारों की

0: विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीहोर जिला में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। जिले में 7,46,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। वर्तमान तक 87,974 किसानों से 6,44,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सीहोर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 789 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें 221 गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क पाई गईं। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर बाला गुरु के की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित जिला स्तर पर टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में भारत की 16वीं जनगणना का अभियान उत्साह के वातावरण में शुरू हो गया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रगणक द्वारा घर घर पहुंचकर मोबाइल ऐप के माध्यम से मकानों के सूचीकरण का कार्य किया गया। ज्ञान भारत अभियान के अंतर्गत सीहोर जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहरों के संरक्षण और डिजिटलीकरण को लेकर संयुक्त कलेक्टर जमील खान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। सीहोर की जीवनदायिनी सीवन नदी के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के तहत जिले में लगे शिविरों में 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। 1 वर्ष से अधिक उम्र के 362 बच्चों को भी टीके लगाए गए। सीहोर के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज द्वारा कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जिले का नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के वातावरण में क्रियान्वित किया गया। इसके अंतर्गत जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को शाला से जोड़ना, शाला की पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज से जोड़ना, ड्रॉप आउट बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने वाले प्रयास लगातार किए गए। जिले में 2,94,408 विद्यार्थियों में से 2,06,298 विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट की जा चुकी है। शासकीय आरएके कृषि कॉलेज ने जिले में खरीफ से पहले सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण आयोजित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अनुगूंज पहल के तहत जिला न्यायालय परिसर में श्रवण और वाक बाधित समुदाय के लिए विधिक साक्षरता शिविर लगाया। जिले में एक बड़ी उपलब्धि के तहत सीहोर के मास्टर ऑफ ताओ कराटे एसोसिएशन के 38 कराटे खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल किया। सीहोर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान का था और वाचन स्वर धारणा सचदेव का।
2: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। 10:05 हुए हैं। डीजे सुनिए फिल्म संगीत।

अर्थ फिल्म की इस गज़ल से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने। रचना कैफी आज़मी की, संगीत जगजीत सिंह का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। 10:15 होने को हैं। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से थोड़ी देर में हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: विविध भारती के समस्त केंद्रों से
2: जनजातीय
1: प्रसारित इस विशेष सजीव प्रसारण में मैं मुकाम सिंह चौहान अपने साथी असीम कैथवास,
2: स्वास्थ्य संवर्धन
1: नीरज कुलकर्णी, वैभव मंडलोई और नानक सिंह बंडोत के साथ आप सभी का सादर पूर्वक अभिवादन कर रहा हूँ। नमस्कार। बताओ, आज हम उपस्थित हैं मांधाता की पावन नगरी ओंकारेश्वर में, जहाँ माँ नर्मदा के तट पर अध्यात्म के साथ साथ आज और अध्याय लिखा जा रहा है। आज 19 जून है और ये दिन विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष गरिमामयी कार्यक्रम में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रही है देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति के विशेष आतिथ्य में आयोजित हो रहे इस गरिमामयी कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की उस परिकल्पना और योजनाओं को नई दिशा मिल रही है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी मध्य प्रदेश की धरती शहडोल में साकार करने का संकल्प लिया था। श्रोताओं, सिकल सेल एनीमिया विशेष रूप से हमारे जनजातीय भाई बहनों को प्रभावित करने वाली एक आनुवांशिक बीमारी है। आज का यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस रोग के समूल नाश के लिए एक महासंकल्प है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को सिकल सेल

दिल से मुक्त बनाना है। आज माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति यह दर्शाती कि देश की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का स्वास्थ्य और खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी ने सिकल सेल एनीमिया जूझते आदिवासी भाई बहनों को बहुत ही निकटता से देखा है, उनकी पीड़ा और समस्याओं को दिल की गहराइयों से अनुभव किया है। अपने भाई बहनों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर रोग के समूल उन्मूलन के लिए वे कृत संकल्पित होकर आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया और इसे अपनी सरकार की कार्य सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज ये एक जन अभियान बन चुका है जिससे हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है, जुड़ना चाहता है और हमें पूरा यकीन है कि ये महाअभियान सिकल सेल एनीमिया के समूल नाश के लिए निरंतर चलता रहेगा। हम आपको बताएं कि माननीय राष्ट्रपति, देश के माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इंदौर खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ गणमान्य अतिथिगण कुछ ही क्षणों में यहाँ मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। भी यहाँ पर मंच के पीछे दाहिने तरफ एक विशाल फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है और इस फोटो प्रदर्शनी का माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री के साथ माननीय मंत्री गणों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। इस फोटो प्रदर्शनी में माननीय मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के उन दुर्गम और ऐसे आदिवासी अंचलों में जहां सिकल सेल के रोगी बहुतायात में हैं वहां भ्रमण किया गया और उन भ्रमण की तस्वीरों को यहां फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय अतिथियों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को माननीय राज्यपाल स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार से वे कृत संकल्पित हैं इस सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति को लेकर। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इससे पहले जब वे गुजरात में थे, जनप्रतिनिधि के रूप में थे, तब भी उन्होंने वहाँ इस अभियान को आगे बढ़ाया और जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर यहाँ आए तो उन्होंने आरंभ से ही इस अभियान को गति दी और आज ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का एक उदाहरण है जो अब निरंतर स्क्रीनिंग के माध्यम से, खासकर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, वहाँ लगभग हर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग के साथ ही परीक्षण और टेस्ट भी उपलब्ध हैं। और आपको बता दें कि माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आ चुके हैं और समस्त सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत अभिवादन किया जा रहा है। आज हर्षित है पावन नगरी ओंकारेश्वर की इस धरा पर और हर्षित है ये सारी जनता जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिवादन कर रही है। उन्हें इतनी समीपता से देखने का उन्हें प्राप्त हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया कल 18 जून को ओंकारेश्वर पधारी और संध्या में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं और उनके दर्शन किए, पूजन किया और उसके पश्चात पावन पवित्र सलीला माँ नर्मदा के तट पर महाआरती में सम्मिलित हुई और आज ये भव्य आयोजन कहीं न कहीं इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के उस संकल्प को जिस अंतर्गत राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत पूरे देश में सिकल सेल रोगियों का परीक्षण स्क्रीनिंग करना है और 2047 तक इस व्याधि से, इस रोग से कोई भी शेष ना रह जाए, ये लक्ष्य है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार इस दिशा में

प्रयास कर रहे हैं और उनके इस प्रयास में देश की सरकार और समस्त राज्यों की सरकारें और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आंगनवाड़ी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और जो सिकल सेल मित्र हैं वे हर क्षेत्र में जा रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें सिकल सेल की बीमारी से बचना है, किस प्रकार से उसका उपचार अब मध्य प्रदेश सरकार के

0: हो चुके हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आयुष मंत्री मंचासीन हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच पर उपस्थित होने वाली हैं और उपस्थित होते ही इस गरिमामय समारोह का शुभारंभ होगा दीप दीपन के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आज यहाँ पर जो जनसमूह है वो न केवल खंडवा और अंचल के क्षेत्रों से बल्कि प्रदेश के लगभग 17 जिलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो खासकर सिकल सेल प्रभावित क्षेत्रों से संबद्ध हैं। वे सभी यहाँ पर आए हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल महोदया महोदय द्वारा सिकल मित्रों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और इस उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ साथ मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो विभाग के अंतर्गत जो चिकित्सा कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो टीम है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम बहुत ही भव्यता और दिव्यता लिए हुए हैं, क्योंकि आज हम पावन नगरी भगवान श्री ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की नगरी में उपस्थित हैं। और ये एक ऐसा अवसर है जब दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति आज यहाँ ओंकारेश्वर में उपस्थित हुए हैं, तो समूची नगरी अपने को अभिभूत कर रही है, धन्य मान रही है। और खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पावन नगरी बहुत ही भव्यता और दिव्यता लिए हुए हैं। मानधाता की नगरी है ये, जिसे आज हम मुख्य रूप से ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है यह नगरी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के किनारे और उस बीच एक द्वीप पर बसी है। इस नगरी का इतिहास, धार्मिक महत्व और भौगोलिक जानकारी तो आप सभी को ज्ञात होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नगरी का मूल नाम मानधाता या शिवपुरी है। पुराणों के अनुसार सूर्य वंश के महान और प्रतापी राजा मानधाता, जो कि भगवान श्री राम के पूर्वज थे, ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा के तट पर स्थित पहाड़ों पर बैठकर भगवान शिव की अत्यंत कठिन आराधना की थी। वे केवल नर्मदा जी का जल पीकर वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। राजा मानधाता ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे जन कल्याण के लिए इस स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तभी से इस पर्वत और नगरी का नाम मानधाता पर्वत और मानधाता नगरी रहा। और श्रोताओं, आपको बता दें कि अब वो क्षण आ चुके हैं जब महामहिम राष्ट्रपति
1: भारत
0: श्रीमती
1: की माननीय
0: द्रौपदी मुर्मू
1: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी
0: दोनों हाथ
1: पधारी हैं।
0: जोड़कर
1: कटघरे से हम
0: सभी
1: हृदय से
0: को,
1: स्वागत
0: उपस्थित
1: करते
0: जनता को
1: हैं
0: अभिवादन करते
1: माननीय
0: हुए
1: राष्ट्रपति महोदया जी का।
0: अपने, और उन्होंने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर सभी लोगों का अभिवादन किया। और अब वे अपने स्थान पर उपस्थित हो चुकी हैं और अब राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान हो रहा है।

0: विद्यार्थियों और समस्त सभा में उपस्थित जनसमूहों द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान
1: भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुण्यधरा जिला खंडवा में
0: इस कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ होने जा रहा है। और माननीय राष्ट्रपति महोदया, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री द्वारा दीप दीपन का कार्यक्रम आरंभ होगा। और श्रोताओं आप बता दें कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय मंत्री आयुष विभाग श्री इंदर सिंह परमार, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जनजातीय कार्य, इसके अतिरिक्त माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जो कि संस्कृति विभाग एवं उसके प्रभारी मंत्री भी हैं खंडवा के, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्री नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल भी इस समारोह में मंचासीन है। और माननीय सांसद खंडवा के श्री गणेश्वर पाटिल और श्री नारायण पटेल, माननीय विधाता यहाँ पर उपस्थित है। और अब आरंभ हो रहा है इस कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ। माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया जा रहा है। और

0: देव शक्तियों का आह्वान स्मरण किया जा रहा है। आज एक भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी पर गंभीर चोट होगी।
1: समावेशी भारत के निर्माण का एक राष्ट्रीय संकल्प।
0: यहाँ उपस्थित जनसमूह, माननीय राष्ट्रपति महोदया और मंचासीन अतिथियों का हृदय से स्वागत कर रहा है
1: तथा मध्य प्रदेश
0: और हमारी सांस्कृतिक परंपरा में किसी भी सुअवसर का आरंभ देव स्तुति के माध्यम से होता है और ये नगरी तो साक्षात भगवान शिव की स्थली है, जहां वे ओंकारेश्वर और बम्बलेश्वर के रूप में दो दो स्वरूपों में विराजित है। हम सभी और अब आपको बता दें कि अब कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। दीप दीपन के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल संबोधित कर रहे हैं।
2: आज कृपा पूर्वक पधारी देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल जी, सभी विधायकगण और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर डॉक्टर देश की प्रथम महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपने बीच में पाकर हम लोग अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में बहुत तेजी के साथ काम किया है। हम लोगों को याद है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में सिकल सेल उन्मूलन के अभियान का शुभारंभ किया था और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि 2047 में सिकल सेल एनीमिया पूरी तरह से जड़ से समाप्त करके ही चैन की सांस ले। और आज जब राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तब मैं उनके सामने अपने राज्यपाल जी के द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार हर 2 महीने में एक मीटिंग राजभवन में होती है, कितनी स्क्रीनिंग हुई है, कितने रोगी पाए गए, कितने वाहक हैं, कितने सिकल सेल मित्र बने, जेनेटिक कार्ड कितने बने, शादी के पहले जिस तरह से कुंडली मिलाकर शादी करने की परंपरा हमारे यहाँ है, उसी प्रकार से उन्होंने ये जागरूकता पैदा करने का और नीचे तक इस बात को ले जाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया कि कुंडली के साथ साथ आदिवासी बाहुल 20 जिले जो मध्य प्रदेश में हैं उसमें जो कैरियर हैं, जो वाहक हैं, वो जेनेटिक कार्ड मिलाए हुए शादी ना करें, जिससे भविष्य में ऐसे बच्चे पैदा ना हो जो सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। और इसलिए राज्यपाल जी का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग देश में सबसे नंबर एक पर होनी चाहिए और आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग 1,60,00,000 में से हमने कर ली है और 2026 में ही, जबकि टारगेट 2027 में था, लेकिन 2026 में ये हमारी कोशिश होगी कि 1,60,00,000 इन 20 जिलों में आदिवासी बाहुल इलाके में जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के रोग होने की संभावना होती है हम अपने पूरा स्क्रीनिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। और इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पिछले वर्ष बड़वानी में आपको आना था लेकिन मौसम खराब होने के कारण आपका आना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आपको ध्यान था और इसलिए इस विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में हमारे बीच में आई हैं। आपका स्वागत करते हुए हम सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर महामहिम राष्ट्रपति जी का जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जय हिंद।
1: मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब माननीय राष्ट्रपति महोदया को सम्मानित करेंगे। और आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य की एक ताम्र प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय राष्ट्रपति को अर्पित की गई और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को एकात्मता की प्रतीक इस प्रतीक किया है। माननीय राज्यपाल जिन्होंने लगातार सिकल सेल की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा भगवान शिव की मूर्ति भेंट की जा रही है और उपस्थित सभागार में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब किसी भी बीमारी से लड़ने के आपको बता दें कि सिकल सेल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सन 2047 तक सिकल सेल रोग को पूरी तरह खत्म करने या कम करने का लक्ष्य रखा है। इस आनुवांशिक बीमारी से आदिवासी अंचल बहुत प्रभावित हैं। इस अभियान की शुरुआत का जो घोषणा हुई सन 2023 के और एक वीडियो के माध्यम से सिकल सेल अभियान के बारे में जानकारी दी
2: मिशन बनेगा और उस मिशन को मध्य प्रदेश में माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आत्मसात किया गया है। प्रदेश के जनजातीय जनमानस के बड़े वर्ग में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखी जा रही थी जो है सिकल सेल एनीमिया।
3: मैं जब 6-7 की थी तब डायग्नोस हुआ कि मुझे सिकल सेल है। जब मैं MBBS कर रही थी उस टाइम पर पता चला कि ये सारी ये बीमारी मेरे पूरे परिवार को है।
4: जैसे मैं जब 7 साल का था जब मुझे पता चला कि मुझे सिकल सेल बीमारी है।
3: पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही मेरे परिवार में इतनी अवेयरनेस थी।
4: काफी चीजें रुकाव आए जीवन में, ऐसा नहीं कि कभी बहुत पेन हुआ, कभी दर्द हुआ मुझे, फिर भी मैं लड़ता रहा।
3: ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि फैमिली से फैमिली मेंबर में बढ़ती जाती है।
4: नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड होता है वो सर्कल शेप का होता है और जो हम सिकल सेल जिनको होता है उनका ब्लड एक सिकल आकार का होता है, जिसमें हसिया बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉट होने के कारण हमारे ज्वाइंट में पेन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है।
3: सिकल सेल में हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस होता है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर लें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप स्ट्रेस मत लें और साथ ही आप अपनी रेगुलर मेडिसिन लें, टाइमली डाइट लें और अपनी नींद पूरी करें। कि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो।
2: सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सिकल सेल की जांच, परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग और दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। यही सेवाएं मरीजों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है।
3: जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ MP गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के वजह से मुझे फ्री में सिकल सेल की दवाइयाँ जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया और फॉलिक एसिड प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जो है वो निःशुल्क स्क्रीनिंग सारी जांचें करवा रही है, पेशेंट की सिकल सेल की जांच जो भी HPLC है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो सारे निःशुल्क कर रही है, दवाइयाँ वितरित कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है इस बीमारी को लेकर कि आपको इसके साथ कैसे सर्वाइव करना है। मैं सभी सिकल सेल वॉरियर्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह देखिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
2: सही जानकारी और नियमित उपचार ही सिकल सेल प्रबंधन की कुंजी है।

0: केंद्र सिकल सेल मुक्त हो देश। सिकल सेल रोगी की स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित ये वीडियो हमें संदेश दे रहा था कि किस प्रकार हम सिकल सेल से जागरूक हों और जागरूकता हमें सिकल सेल को समाप्त करने की ओर ले जाए। और अब लक्षित समूह में 100% स्क्रीनिंग पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों का सम्मान माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत जामिया की सरपंच डाबिया की सरपंच यहां पर मंच पर उपस्थित हो रही हैं और उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान उनके अथक प्रयास का कारण है, उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उनके लिए है ग्राम पंचायत। और अब ग्राम पंचायत कुम्हार खेड़ा की सरपंच यहां पर उपस्थित हो रही हैं और उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी उनके साथ उपस्थित है और समूचे पांडाल में उपस्थित जन समूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया है। और स्वागत के क्रम में अब अगली स्वास्थ्यकर्ता यहां पर उपस्थित हो रही है मंच पर और माननीय राज्यपाल द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं इन प्रतिभाओं से जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अनूठा कार्य किया है, बहुत काम किए हैं। और उन्होंने न केवल अपनी पंचायत का 100% स्क्रीनिंग की है लोगों की सिकल सेल जागरूकता की दिशा में और अब वहां पर समग्र सामग्री उपलब्ध करवाकर उनका जीवन खुशहाल बना रहे हैं। और सम्मान की अगली कड़ी में और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं।
1: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ओंकार महाराज के इस प्रांगण में मां नर्मदा की कृपा से सच में ये अमृत कुंभ हो रहा, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर ही विराजमान महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल साहब, आप लगातार हर क्षेत्र के लिए हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं, लेकिन खासकर सिकल सेल के इस पूरे अभियान में आपकी लगातार सक्रियता के कारण से हम आज तक के सारे स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड तोड़ करके सच में एक बड़े पुण्य के काम को में लगे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता, अभिनंदन करता माननीय महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्रीमान विजय शाह जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर इस निमाड़ अंचल की हमारी सारी जनता दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबका भी नमस्कार करता हूँ। नर्मदा महारानी की, ओंकार महाराज की, आज अद्वैत वेदांत के दर्शन के शिरोमणि श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज की इस तपोभूमि में हम सब निमाड़ के धुनी वाले महाराज और साथ ही साथ क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की भी कर्मस्थली के क्षेत्र में ये एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां अपना जीवन धन्य करेगी और हम जन जागरूकता के माध्यम से एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी का नाम और जिसका प्रभाव देख करके भविष्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदमों को रोकने का संकल्प आज का ये राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके सानिध्य में हम अब पुनः ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे राज्य में सच में आज का ये मंच इस प्रकार से भी हमको शोभा दे रहा है कि एक तरफ सादगी शुचिता और संघर्ष की मिसाल महामहिम राष्ट्रपति

0: महोदया, हमारे बीच ऐसे पवित्र संकल्प के कार्य को पूरा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारी है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे, तब मंगूभाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे, उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है, कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं, जाने अनजाने अभी हमने वीडियो देखा है और वीडियो के माध्यम से पीढ़ियों का ये जो जाने अनजाने का न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है, आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया, बड़ा काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। आज अपने इस मंच पर ही, खासकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी, और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति महान नायकों के नाम पर हमने अपनी सरकार की कैबिनेट की है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय उत्सव का हमने नाम दिया है। जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूँ तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः ओंकार महाराज की धरती पे मां नर्मदा के आशीर्वाद से महामहिम राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में फिर संकल्प करें। मध्यप्रदेश की धरती पर जब तक हम इस पूरे अभियान में सफलता नहीं पा लें तब तक हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं मध्यप्रदेश की धरती पर पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। राम राम, जय श्री राम।
1: माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उद्बोधन में उनका एक संकल्प नजर आया और वो संकल्प है सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक पूरी तरह से समाप्त करना और हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना, उन्हें स्वस्थ बनाना, यही माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है। और अब उस संकल्प को साकार करने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और वे अब संबोधित करेंगे।
2: सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस ओंकारेश्वर के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री

डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्री जनजातीय विभाग श्री कुंवर विजय शाह जी, मंत्री आयुष विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सभी अधिकारी गण, उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रदेश में बल्कि सारे विश्व में आज सिकल सेल दिवस मना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी उपस्थिति से प्रदेश की जनता गौरवान्वित हुई है। प्रदेश में विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन जन जागरूकता, जन भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। माननीय महोदया, सिकल सेल रोग एक समस्या बल्कि जनजातीय समुदाय सामाजिक विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 को जनजातीय समाज के सम्मान एवं उत्थान को नई दिशा देने की पहल जनजातीय गौरव दिवस के साथ मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन का मिशन प्रारंभ किया था। प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 में शुभारंभ किया। जनजातीय समाज यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र में इस गंभीर अनुवांशिक बीमारी की चुनौतियों को समझते हुए देश भर में सिकल सेल उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन बनाया है। राज्य सरकार ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अब तक प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की जांच हो गई है। यहाँ उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 2026 के एंड में हम जांच पूरी कर लेंगे, बाद में दवाई की जो बात है वो दवाई हम करते रहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और जनजातीय समुदाय के उत्थान और स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता के प्रयासों से आज पूरा देश, विशेषकर जनजातीय समाज बीमारी से प्रति जागरूकता है और सतर्कता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2023 में जब इस शहडोल में ये शुरुआत किया प्राइम मिनिस्टर ने, तभी से सारे देश में ये उन्मूलन का काम चल रहा है और अभी तक सारे हिंदुस्तान में 7,21,00,000 से भी ज़्यादा जांच हो गई है। मैं समझता हूँ कि जनजाति समाज के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उस रहती जनजाति समाज के एक अंग होते हुए उनका और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी को बताना चाहूँगा कि प्रदेश में सिकल सेल एलोपैथी दवाइयाँ के साथ आयुर्वेदिक दवा का उपयोग भी प्रयोग भी शुरू किया है, जिसके प्रारंभिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। आपकी गरिमा भाई उपस्थिति में सिकल सेल रोगियों की अपील करूंगा कि रोग उपचार में एलोपैथी दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा का भी उपयोग करें, आपको जरूर उसमें फायदा मिलने वाला है। स्क्रीनिंग के बाद दिए गए डिजिटल कार्ड, जीनेटिक कार्ड, यहाँ बार बार दोहराया है कि कार्ड वैवाहिक संबंधों के लिए ऐसे समझो जन्म कुंडली है, उसके समान इसका विवाह संबंधों में पूर्व मिलान जरूर करें। यदि युवक और युवती दोनों को सिकल से रोग पीड़ित है तो शादी नहीं करें, क्योंकि यह पाया गया है कि ऐसे दंपति की संतान में जन्म से सिकल से रोगी होने

0: की संभावना बढ़ जाती है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी व्यस्तता के कार्यक्रम भी समय निकालकर आप यहाँ आए, मैं हृदय से, दिल की गहराई से यह आभार आपका मानता हूँ, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर ने यह लॉन्चिंग किया, उपराष्ट्रपति भी डिंडोरी आ गए और आज हम ओंकारेश्वर में आपको यहाँ उपस्थित है के हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है कि तीनों नेता ये सिकल सेल के विश्व सिकल सेल दिन में उनकी उपस्थित रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।
1: माननीय राज्यपाल महोदय के उद्बोधन के बाद अब वो अवसर आ चुका है जब उपस्थित यहाँ की जनता माननीय राष्ट्रपति महोदय को सुनना चाहती हैं और उसी के तारतम्य में अब बहुत शीघ्र माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सभी को संबोधित करेंगी और उनके संबोधन के लिए समूचा पांडाल संयमित और अनुशासित होकर उन्हें सुनने के लिए आतुर हो रहा है। मंच पर माननीय राष्ट्रपति बैठी हुई हैं और बहुत जल्द हमें संबोधित करेंगी और अब वो डेस्क की तरफ बढ़ रही हैं और कुछ ही क्षणों में हमें संबोधित करेंगी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमें संबोधित कर रही हैं।
2: इंटरनेशनल सिकल सेल एनीमिया दिवस के इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री इंदौर सिंह परमार जी, कुबेर विजय शाहजी और नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है 1.25 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त मॉडल के रूप में देश में पहली बार ऐसा मिशन प्रारंभ किया गया है। इसे केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है, इसे जनजातीय स्वास्थ्य

का मुद्दा, आनुवंशिका से जुड़े जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चुनौती के साथ ही सामाजिक आचरण में बदलाव के मिशन के रूप में भी देखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन की पृष्ठभूमि में अनेक स्तरों पर किए गए वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन रहे हैं। ICMR, ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स, NHM, WHO और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय के विभिन्न आयामों पर अध्ययन किए हैं। मैं जानकर खुश हूँ। आज जो मैं यहाँ आने से पहले कुछ स्टॉल को मैं देख रही थी, केवल एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद भी इसमें रिसर्च करके दवा भी रिसर्च करके निकाले हैं और दोनों दवा दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनसे मुख्य के रूप में आकलन सामने आया है, सिकल सेल एनीमिया का सबसे अधिक प्रभाव मध्य भारत की जनजातियों पट्टी में है। आज मैंने लिस्ट देख रही थी जो स्क्रीनिंग किया गया है, 17 राज्य 17 स्टेट्स को स्क्रीनिंग किया गया है। उनमें से मध्य प्रदेश और ओडिशा में सिकल सेल रोगियां ज्यादा पाया गया है। अनेक परिवार पीढ़ियों से इस रोग से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें बीमारी का नाम तो मालूम नहीं था। अध्ययनों से ये भी पता चला कि भारत की जनजातीय समाज सिकल सेल रोग का प्रसार सामान्य आबादी की तुलना में कई गुना अधिक है। फलस्वरूप देश में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, जेनेटिक साइंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को एक साथ जोड़कर ये राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। देश के 17 राज्यों में चलाए जा रहे इस अभियान के प्रति राज्यों ने भी पूरी तत्परता से भागीदार की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय एवं चीफ मिनिस्टर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे आंतरिकता से सहित मिशन मोड में इस चीज को लिए हैं, मुझे लगता है ये जो भी आज जिन लोग ग्रसित हुए हैं, उन लोगों का जिस तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। ये पूरी तरह ये केवल इसी पीढ़ी के नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये शायद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं सभी राज्यों के अधिकारियों को, सरकार को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये एक इसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको जैसे उन्मूलन किया जाए, पूरा समाप्त किया जाए, इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये क्योरेबल है, ये खत्म हो सकता है। इसके लिए दवा सामने आया है, उसको ग्रहण करने से मुझे लगता है ये देश में और सिकल सेल नाम की कोई बीमारी और आगे भी नहीं आया गया। देवी और स्वजन, मुझे इस मिशन की परिकल्पना ने प्रभावित किया है, इसलिए मैं इस मिशन के तीन प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूँगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज़ को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल के लीजिए से देखते हैं कि देश में पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या की आनुवंशिक स्क्रीनिंग डिजिटल ट्रैकिंग के साथ की जा रही है। मिशन मोड से जुड़े स्क्रीनिंग का ही परिणाम है कि अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, चिन्हित जा चुकी है, और इस रोग के 20 लाख से भी अधिक बाहक यानी कैरियर भी पहचाना जा चुकी है। बाहकों की इतनी बड़ी संख्या

0: से जुड़े चुनौती का समझने की आवश्यकता है। सिकल सेल के बाहक लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं होते, इसलिए उन्हें इसकी भविष्य की गंभीरता का कोई अंदाज नहीं लग पाता। अधिकांश बाहकों को ये नहीं पता होता है कि अपनी संतान को ये रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। संतोष की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिशन मोड में पिछले कुछ वर्षों में सिकल सेल से जुड़े रोगियों और बाहकों की पहचान के साथ साथ उनकी समुचित स्वास्थ्य देखभाल पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरी संज्ञान में लाया गया है कि बहुस्तरीय प्रयासों के क्रम में मध्य प्रदेश में सभी प्रभावित लोगों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आधारित जांच सुविधा किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातियों विद्यार्थियों को भी परामर्श, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातियों क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण भी किया गया है। इन सार्थक पहल के लिए मैं प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी प्रदेशों के सम्मेलन शक्ति और सक्रियता से हम वर्ष 2047 से बहुत पहले ही देश में से सिकल सेल संबंधी रोगी के उन्मूलन की अपने राष्ट्रीय लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। देश में जनजातीय समुदाय के लोगों के सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। मैं आशा करती हूँ कि मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय विकास के अनेक प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय महामहिम राष्ट्रपति का संबोधन हुआ और अब राष्ट्रगान की धुन बजाई जा रही है और समूचा पंडाल खड़े होकर राष्ट्र का सम्मान कर रहा है।

0: और इसी के साथ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत विश्व सिकल सेल दिवस 2026 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका कि मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से सीधा प्रसारण हुआ, उसकी क्रिएटिव टीम में हमारे यहाँ उपस्थित रहे आकाशवाणी इंदौर और खंडवा की कार्यक्रम एवं तकनीकी टीम, जिसमें शामिल रहे नानक सिंह बंडोत, नीरज पाटिल, वैभव मंडलोई, नीरज कुलकर्णी, विद्याधर मुले, मुकाम सिंह चौहान, चिन्मय दीक्षित और असीम कैथवास। और हमारे इस समग्र प्रसारण के लिए मार्गदर्शन एवं नियोजन कार्यक्रम प्रमुख राजेश एवं उपनिदेशक अभियांत्रिकी अभय कुमार गुप्ता का रहा। और अब मैं मुकाम सिंह चौहान आपको स्टूडियो लिए चलता हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 11:17 हुए हैं। विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: इंद्राणी रिज्व और राजकुमार रिजवी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर।

0: पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया, इब्राहिम फैज़ इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज़्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल

0: उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

मॉडर्न नॉन फिल्मी गज़ल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का

0: करवा था।
1: हास भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

0: तरंग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
3: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरीघाट औनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है।

0: वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से सजा।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3।

0: बजे
1: सखी सहेली
0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत। लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, हसरत जयपुरी इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर तय कर रहा है एक बढ़िया मजबूत सी बात को और बड़े प्यारे से जज्बात को, और इन्हीं बात और जज्बात के बीच में बात आती है कि सुरीला सफर में हम जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है? तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफर में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं, और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ विचार जो है वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिखती है। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं, हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रोमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं नहीं। दार्शनिक जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा, कैफे आजमी, देशभक्ति, कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज, प्रेम धवन, सुगम और विविध, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति, पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं सब अपनी जगह महान थे, सब किसी एक को पसंद करना कठिन है, और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों, शायरों के सामने चुनौती आने लगी।

एक वही एक लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े, और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे भी हमारे अनकहे एहसासों को आवाज दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें भावनाएं रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं। एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस प्यार बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं। और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं, उस गीत में पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी। तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा, और इसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत के कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार, ये कौन चित्रकार है? ये गीत हम सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीतकार भरत व्यास ने इसे लिखा है और सतीश भाटिया ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये खूबसूरत से नगमे जो लिख जाते हैं या जिनने अपनी धड़कनों को शायद पिरो दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत से भी हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा पंक्तियां कौन सी हैं, तुम्हारे श्रोता लिखता है ध्वजा से हैं खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के, आहा कितनी बढ़िया है ना। हमारे श्रोताओं ने कवि की कल्पना का चमत्कार, यह उम्दा लाइन जहन में आती है जी बिल्कुल। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये कौन चित्रकार है, ये कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है, बिल्कुल सही। हमारे श्रोता ने बताया कि जितेंद्र पर फिल्माया गया कवि प्रदीप की यह बेहतरीन रचना है और संगीत सतीश भाटिया का। हमारे श्रोता ने पसंदीदा पंक्तियों में तो पूरा ही लिख दिया, तपसियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए रुकश दीवदार के, गाड़ी चाहिए गुलाब की बगीचे ये बहार की, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है जी बिल्कुल। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है जी, ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है जो सबको पसंद आ रही है। हमारे श्रोताओं ने, अच्छा आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरुआती जो फिलर बजाया था उसके बारे में आप बात करें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इसकी हर पंक्ति पसंद है जी बिल्कुल हमें भी। हमारे श्रोता ने बताया कि बहुत खूबसूरत गीत है और प्रकृति का बड़ा प्यारा सा चित्रण है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, बेहद खूबसूरत पंक्ति है जी बिल्कुल। हम कोई एक शब्द को पकड़ सकते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं गीतकार का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, या कहते हैं कि गीतकार अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं, उनकी लिखनी से मोती टपकते हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। कितना खूबसूरत गीत हमने सुना है, अब इस गीत के बाद अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनके प्रिय गीतकार जो हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। मिर्ज़ा गालिब अगर जिंदा होते तो साहिर की शायरी सुनकर वाह वाह कह उठते, ऐसा उनका कहना है। और चोट खाया प्रेमी हो, सभी तरह के गीत लिखे उन्होंने, जिंदगी भर साथ निभाने वाला, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीतों के बारे में उन्होंने कहा है। और उसके बाद हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया के सभी गीतकारों ने अपने खास अंदाज में बेमिसाल गीत दिए हैं, उनमें से एक चुनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत मुश्किल है। अब 1957 में आई फिल्म साधना में मर्द को जन्म देने वाले गीत के लिए उन्होंने बहुत प्यारा गीत दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गीतकार अपनी कलम से क्या खूबसूरती से उस बात को, उस भावना को निकाल देते हैं जिसे कहना शायद शब्दों में कठिन पड़ जाए, शायद गद्य में कठिन पड़ जाए, पर पद्य में बड़े प्यार से लिख देते हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि जो इनके गीतों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सिर्फ 3 शब्दों में लंबी बात है, और शब्दों का चित्रण निरूपण विश्व को रचने वाले रचनाकार की प्रतिभा का बहुत बड़े तरीके से हम आकलन करेंगे। और गीत रचना किसी संगीत धुन और भावनाओं का गहरा पुल है और अनुभवों को छू लेती है। और सच बात है गीतकार शब्द नहीं लिखते, हमारे श्रोता लिखते हैं वे शब्दों के जादूगर होते हैं जो चंद शब्दों में पूरी दास्तान पिरो देते हैं। हमारी खुशियां, आंसू, यादें सब कुछ अनमोल म्यूजिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। आमजन कहीं कह नहीं पाते वो बातें गीतकार, कवि और शायर अपने शब्दों में कह देते हैं। सही बात है। और इन्होंने तो, एक और हमारे श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों के नाम भी लिखे हैं और हम उन सब गीतकारों की उस कलम को प्रणाम करते हैं कि क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कलात्मकता को बढ़ा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो आप ज़रूर

पहुंचाई अपनी अनुभूतियां। हमारे श्रोता लिखते हैं कि व्याकरण शब्दावली ही नहीं रचयिता के व्यक्तिगत अनुभव, अनुभूतियां, भावनाओं, जीवन का सार होता है। गीतकार जिंदगी लिखा करते हैं, शब्द नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। इन्हीं गीतकारों को याद करते हुए अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बस मैं आपको बता दे रही हूं कि अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं वो साहिर लुधियानवी की कलम से है, और आपको साहिर लुधियानवी का कोई शेर, कोई कविता, कोई बोल इस गीत से हो या ना हो चलेगा। कोई भी शेर अगर पसंद आता है तो आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। तब तक सुनिए ये बहुत प्यारा सा गीत जो कि लिया है कभी कभी फिल्म से। बस इसके गायक का नाम बता दीजिएगा और बताइए साहिर लुधियानवी की कोई शेर, शायरी या कोई कविता।

फिल्म कभी कभी से यह गीत हम सुन रहे थे, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत और गाया मुकेश ने। और यही प्रश्न तो हमने आपसे पूछा था, और इसके साथ हमने एक प्रश्न और पूछा था। हमने कहा था कि साहिल लुधियानवी की कौन सी पंक्ति है जो आपके दिल को छूती है। कभी कहीं और पढ़ी होगी आपने, तो आपने लिखकर भेजी है कि अपनी तबीयतों का कोई गम नहीं मुझे, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। आह क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मशरूफ जमाना क्यों वक्त अपना बर्बाद करिए, दिल लाइन दिल को छू जाती। जी बिल्कुल, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि साहिर की एक लाइन उन्हें पसंद है, जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं। जी, कल और आएंगे नगमाए खिलती कलियां चुनने वाले।

0: मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, ये लाइन हमारी श्रोताओं को पसंद है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि मैंने कक्षा 9वीं में देखा था इस फिल्म को और नौजवान दिल उस समय शायरी सुनकर धड़क गया था। सही बातें, होता है ऐसा। और हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी होते कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी अपनी पसंद के शेर हम तक पहुंचाए हैं जो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही और भी कई सारे आए हैं, उन्हें बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, जैसे कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, संसार की हाय शहर पर बस इतना फसाना है कि धुंध से आना है। बहुत सही बात आपने लिखी, बहुत बढ़िया शेर आप लिख रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत, पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है, कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है, वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कने लिखता है। सही यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता, बल्कि जज्बात, उसकी धड़कने, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं, तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना, लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगी और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है। और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ, उनके लिखे हुए कुछ नगमे, कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया है कि हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं। वो लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है और ये गीत सभी को पसंद है, हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं। और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं। कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
4: मैंने

हम सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहाँ से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक बगिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना, वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म में कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी, या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियां बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं, मुकेश ने गाया, सलिल चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रजनीकंदा के लिए राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है, और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, 22 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है। इतने सारे अवार्ड्स के साथ में

हमारे उनके लिखे गीतों को वहां तक पहुंचाना, विश्व स्तर तक पहुंचाना, वह भी बड़ी बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सफर सुहाना कहाँ होगा। योगेश जी, माया, गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं रोते हुए को हंसाने वाले, निदा फाजली जी और पूरी हीर राजा पद्य बद्य करने वाले कैफी आजमी जी। सच बात है कितना कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सके। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से। और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है और इस गीत को आपको सुनना है और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है ना, और गीतकार के साथ संगीतकार कौन है, और इनका लिखा कोई भी वाक्य या कोई भी पद अगर आपको पसंद आया है, कोई कविता या इसी गीत से कहीं से कुछ भी, तो बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये गीतकार गोपाल दास नीरज है। तो गोपाल दास नीरज की किसी भी रचना को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और ये गीत सुनिए, बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का, तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है, और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपाल दास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार है, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियां आई थी गोपाल दास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज मेरे को मेरे पापा को सबसे के सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियानी की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपाल दास नीरज, मम्मी वहां पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी, और इतनी जबरदस्त फैन हुई कि उन्होंने मुझे झरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं, और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं, परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे जरा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफी की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूह सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत। हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के जमाने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया।

नौशाद, एस डी वर्मन, ओपी नैयर से होते हैं, आर डी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखनी के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल, हमारी गौश्रोता ने लिखा है कि वो नीरज गोपाल दास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो सुबह 4 बजे तक बैठा रहा, नीरज लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरू सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां जवां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरू के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे पन के कली वन के सवाब आगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया। लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है। हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव वर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया। बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैजी, हसन कमाल, जानेसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम, पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि, कुमार बाराबंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है। परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज की इस कार्यक्रम सुरीला सफर का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं, कभी और किसी दिन सुनाएंगे। पर आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है। आइए सुनते हैं इस गीत को, आज्ञा दीजिए। शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हो तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो।

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

बारिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की यह पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। यह समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंहो नादेर जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक सबे मंत्र गंभीरतम जय जय वंदे मातरम।

0: चलो सिंह स्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाया गया।

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो मां का जयगान कर रही है।

इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़ कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।

0: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
1: बारिसाल की इस

0: घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
1: बारिसाल की घटना के पांचवें दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
0: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
1: द बंगाली, इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
0: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
1: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
0: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
1: हितवार्ता ने लिखा,
0: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।
1: ६ को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
0: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा था।

0: फुल्लर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविंद्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया, पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला था।
0: वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करी।
2: बारिश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि स्क्रीनिंग का लक्ष्य तय समय से ही पहले हासिल कर लिया गया है।

0: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मिशन 2047 के तहत लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति आज ओडिशा के रायरंगपुर पहुंचेंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के दौरे पर जाएंगे, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रहेंगी। दोनों नेता सुबह मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्किल सेंटर तथा स्कूल का दौरा करेंगे। इसके बाद वे रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वित्त वर्ष में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं, जिनमें पटना के हॉर्डिंग पार्क में 5 अतिरिक्त प्लेटफार्म और फतुहा रेलवे स्टेशन का विकास शामिल है। रेल मंत्री ने छपरा से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को आज रवाना करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जांच करने की सलाह दी गई है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि 3 मई की परीक्षा के एडमिट कार्ड पुनर्परीक्षा के लिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि कई उम्मीदवारों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उज्जैन में मेडिसिटी, साइंस सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर यादव ने कहा कि गुजरात की तरह राजधानी भोपाल में गिफ्ट सिटी बनाई जाएगी, जिससे इकाई सिटी यानी एजुकेशन, नॉलेज एंड एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगी। प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्र और शिल्प कला से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के सुप्रतिष्ठित कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं मौसम की। सामान्यतः 15 से 16 जून तक दस्तक देने वाला मानसून इस बार करीब 10 दिन की देरी से 25 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। जून माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है, जिससे खरीफ की फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम के गोविंद नगर बनखड़ी कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा पर लगी रोक को हटा दिया है। शिवपुरी में अवैध कॉलोनियों के विकास लाइसेंस और अनुमतियों की कड़ाई से निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय सेल का गठन किया गया है और गुना कलेक्ट्रेट में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन विभाग के द्वारा मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी

0: 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और

0: उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
1: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार 2रे और 3रे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, सबके लिए।

0: अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने

0: 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा हो। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से, मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज़ है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत। परिवार फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरलिक धुन सुन आई राधे जमुनक तट पर निरत करत उठ उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसे चंद तपन दिग्दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

संगठन का सच सच सच सच नागिन देश देश सगन नदा दा किट सच सच सच सगन सच सच सगन का सगन का किट सच सच सगन का जी सगन नदा साधा किट सच सगन का साधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा Da, say ya, say ya, cut. Da, say ya, say ya, cut.

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के

0: इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही हूँ।
0: शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना
1: जी।
0: अच्छा, बताइए क्या करती हैं आप?
1: एक टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं LED, डिस्क, पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधारते भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12वें साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो सुन लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे। जी,
0: नीता मिश्रा।
1: आप
0: नीता,
1: कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए, लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदाबांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि
1: हाँ,
0: उमस
1: तभी
0: बहुत हो
1: बहुत
0: जाती
1: ज्यादा
0: है।
1: गर्मी, बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए, आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना।
0: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती, मेरी सहेली है।
0: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद
1: जी
0: करती हैं। बाकी आप उपन्यास
1: जी
0: बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी
1: हाँ हाँ
0: प्रेमचंद
1: जी
0: जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं। बहुत अच्छा साहित्य आप पढ़ती हैं,
1: जी
0: जिसमें
1: हाँ
0: हमें
1: पढ़ना
0: बहुत
1: मतलब लगभग तो सभी कुछ छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे। कॉमिक्स का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब बचपन में हम थे
1: जी
0: तो कॉमिक्स का जमाना था, और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं। आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है
1: हाँ,
0: आपको? आज के जमाने के, जो आज के दौर
1: गाने
0: के गीत हैं, वो पसंद करती
1: आजकल के
0: हैं?
1: भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खास तौर से लता जी से।
0: तो उस सुनहरे दौर का, लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
1: बहुत सारे हैं,
0: आज
1: हमने
0: जो गीत
1: पिछले
0: आप
1: हफ्ते
0: सुनना
1: सुना
0: चाहती
1: था,
0: हैं वो बताइए।
1: मुझे सुनना है मैं हूँ खुशरंग हिना, हिना फिल्म का गाना।
0: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए हैं अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ,
0: अच्छा
1: जब मौका मिलता है ना तब भी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए, आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर, राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है, जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं,
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय? कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम। जी
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: मैडम,
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी
1: हाँ
0: डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर फिर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है।
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम बीगा बीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना जी।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: बस
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे ही रहती हूँ
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है,
1: जी। मैम जी,
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: मैम मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी।
1: जी। मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर ही रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शाहजहां के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।
2: बहुत प्यार।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: अभी? हाँ छोड़ा है मैंने, अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके, तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी, 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में

0: संस्कार पढ़ते हैं, खासतौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: हाँ, पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके
1: अभी
0: अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी, अभी स्टार्ट किया है, और राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही
1: हाँ
0: अपने
1: हाँ
0: आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इश्यू है, मतलब बहुत ज्यादा इश्यू है, लेकिन शौक बचपन से है, तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैम, मैं पलक अहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल
1: भुगावली।
0: लगाया? अपने शहर का नाम बताइए। बुगावड़ी।
1: यस मैम,
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है भुगावली।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है, वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही तो है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम,
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: अभी 1 साल पहले। यस
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम, आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और
0: आपने
1: साथ में जानकारियां भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव शिवगढ़ के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ
0: आपने
1: पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं।
1: मैम मुझे तो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना, मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है? अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाणे है।
0: प्रतिभा रहाणे जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योगाश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलेंटियर जाती हैं,
1: हाँ
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप
1: हाँ
0: कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह
1: और
0: की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: हाँ तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो अंदर से खुश होते हैं।
0: तो योग हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है,
1: हाँ
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में ये क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियाँ जिन्हें अभी और इंतज़ार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हों, अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियाँ जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687028, मुंबई का एसटीडी कोड है

0: शून्य दो दो। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002464662। एक और नंबर है 2867028। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
4: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुँच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

0: अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांसी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मन स्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली,

उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन के चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 1.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही है। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हुआ करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा

रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली देवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए? अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभालने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना

और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है। आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़पकर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मिले धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे, कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी, तब भी कोई न कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ, मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो,

बात करता हूं। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूं। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो? तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुँचता ही होगा। अनुभा की आवाज़ को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।

ने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, टट कर देगी, तेरे दांव से बड़ा कर पेट पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी।

पकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से ना पैगी, मेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी।

साथ बड़ी पापा इसने जूते का जो फीता फिर गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता तेरे झाड़ से धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ना उखाड़ गई जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी मैंने चारों खाने जित कर देगी मैंने चारों खाने जित कर देगी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई। और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों को FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आशीष सेंद्री। सभी श्रोताओं को नमस्कार।

श्रोताओं, ये गीत था दुश्मन फिल्म से। आवाज़ें दी थी कुमार सानू और लता मंगेशकर ने। गीत था आनंद बख्शी का, संगीत उत्तम सिंह का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ों में अर्जुन पंडित फिल्म का गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन।

श्रोताओं, कुमार सानू और अलका अग्निक की गाय अर्जुन पंडित फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 5:10 होने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे विकसित भारत रोजगार मेला 2026 विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that he'll be coming over here and say in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, that are numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the

0: Total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल. और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और साथ उनको जो स्कॉर्ट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
0: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through forgetting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफ़र देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो उसमें आती है.
0: People will feel secure. Okay, the government is there to help us out. So we should not feel that okay, I'm not going to achieve anything. But let our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
1: जी. और चंद मुख्य बातों पर नज़र डालें तो यहाँ ज़रूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है. जी.
0: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli bar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage.

0: capped to a maximum of rupees 15,000, right?
1: Mm.
0: And then the disbursement will be in two stages.
1: Mm.
0: That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है.
0: Yes.
1: बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं.
0: Yeah.
1: और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
0: Yes. है ना? See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
1: Hmm.
0: It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं. नहीं, आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
1: Hmm.
0: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
0: Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 years.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये

0: योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना?
1: Yeah.
0: लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ है.
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. And already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा ना हो, कम होनी चाहिए. तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा है.
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
1: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, विद द मनी द

0: They're all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they've got their letter.
1: Hmm. An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Aur cameraman bilkul tayyar in aitihasik kshanon ko camera mein kaid karne ke liye aur आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट हायर एटलीस्ट 2 न्यू एम्प्लॉयज व्हाइल लार्जर फर्म्स 50 और मोर बेसलाइन वर्कर्स मस्ट ऐड एटलीस्ट 5 न्यू एम्प्लॉयज And the financial benefit is that the government pays companies up to Rs. 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then, the payout channel is payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah, and then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और
0: yes,
1: ये बहुत
0: yes.
1: महत्वपूर्ण है
0: yeah,
1: जी
0: yeah.
1: इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके ही इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हु आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... Short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does is something, you know, means... He wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India

0: a strong economic power and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
0: दैट्स ट्रू. एंड यू नो आई अटेंडेड वन ऑफ दीज डेज, यू नो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given talent in you and he will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
0: yes,
1: तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता है.

0: था बच्चों में, और बच्चों को लगता था परीक्षा, अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना। तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं, और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज़्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के आ जा रहे हैं यहाँ से।
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know. And even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and in mingles with them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
0: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है,
1: Yes.
0: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी,
1: Yeah,
0: है ना।
1: and see who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India, right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they've always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they've generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
0: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा, अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही
1: बिल्कुल
0: होती
1: बिल्कुल
0: हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया। नहीं तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत
1: सरकार
0: सरकार जी।
1: सो इन फैक्ट द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ अस यू नो देर आर डेफ एंड डम पीपल ऑल्सो ओवर हियर एंड देयर इज वन पर्सन
0: ट्रांसलेट किया
1: या
0: जाए।
1: इज ट्रांसलेटिंग थ्रू एक्शन इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी हिम यू नो द वे इज डूइंग द म्यूजिक एवरीथिंग एंड इज से एंड व्हेन द वर्ड्स यू नो व्हेन द वर्ड्स कम ही इज ट्रांसलेटेड थ्रू इज द एक्शंस यू नो एंड It's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today. Yeah.
0: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा।
1: Yes.
0: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा
1: I know.
0: नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं
1: Yeah, I think everything has stopped. They are all in attention. And I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais. And once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived. He
2: Marshal.
1: has entered. And is entered and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार
3: जोरदार
2: तालियां
3: तालियां
2: हो जाए देवियों।

0: पर सज्जनों तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
0: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
1: मैं मन्नत भाटिया
0: और मैं जयवर्धन गोयल,
1: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत।
2: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the desk.
1: प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
2: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
0: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
0: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
1: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome remarks by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give his speech.
4: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit Adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की

आपने गारंटी दी है महिला वर्कर्स के हित के लिए, एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है, जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए, मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा, उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है।

0: जिसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be

0: distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money, and the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
1: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
2: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
2: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है।

ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों

को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं,

उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं

देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है।

और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है।

कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है।

0: जीवन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू? और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत बैड न्यूज फिल्म से हमने लिया है। करण औजला ने इसे गाया और गीत संगीत भी करण औजला का है।

श्रोताओं, अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे विकसित भारत रोजगार मेला 2026 विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। शाम के 6:35 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: श्रोताओं नमस्कार, इस सुहानी सांझ में कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट के नए अंक के साथ आज मैं हूं आशीष सेंद्रे। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम में हम रोज़ाना आपको कुछ जानकारी देते हुए सुमधुर गीतों को उससे जोड़ते हुए सुनवाते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। अभी है एक गीत की बारी।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824। सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में। श्रोताओं, आज है 19 जून और 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 जून 2015 को प्रस्ताव पास करके इसकी घोषणा की गई। इस दिवस का उद्देश्य युद्ध और संघर्ष में यौन हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ आवाज उठाना है। और श्रोताओं, आज ही है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, जो कि हर साल 19 जून को मनाया जाता है। ये दिन सिकल सेल रोग, इसके शीघ्र निदान और बेहतर उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल सीबीएसई से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और जेईई में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लाल बर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
0: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट, और इस कार्यक्रम का सफर आप तय कर रहे हैं आशीष सेंद्रिक के साथ। श्रोताओं, आज है फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री काजल अग्रवाल का जन्मदिन। काजल का जन्म 19 जून 1985 को मुंबई में हुआ था। आप वर्ष 2004 से फिल्मों में जुड़ी है। काजल अधिकतर तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी है। काजल ने अपने अभिनय की शुरुआत एक हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना से शुरू की, जिसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय के साथ अभिनय किया था। ये फिल्म 11 अगस्त 2004 को प्रदर्शित हुई, जिसमें काजल ने दिया की बहन के रूप में एक छोटा सा किरदार निभाया था। काजल ने पहली बार तेलुगु फिल्म में अभिनय 2007 में तेजा फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में निभाया था। श्रोताओं, अभी हम काजल अग्रवाल की पहली फिल्म क्यों हो गया ना का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: लॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री काजल अग्रवाल की, जिनका आज जन्मदिन है। काजल ने 30 अक्टूबर 2020 को मुंबई के ताजमहल पैलेस में व्यवसायी गौतम किचलू के साथ शादी की। काजल ने मुंबई के किशीचंद चेलाराम कॉलेज से मास मीडिया में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके पिता विनय अग्रवाल एक उद्यमी हैं और माता सुमन अग्रवाल उनकी बिजनेस में मैनेजर है। उनकी एक छोटी बहन निशा अग्रवाल भी अभिनेत्री है। काजल एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। आपने मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने कई सफल हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। काजल अग्रवाल की हिंदी फिल्में हैं 2004 में क्यों हो गया ना, 2010 में सिंघम, 2013 में स्पेशल 26 और 2016 में दो लफ्जों की कहानी। हम अभिनेत्री काजल अग्रवाल के जन्मदिन पर आकाशवाणी बालाघाट और अपने श्रोताओं की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आपकी सुपरहिट फिल्म सिंघम के इस गीत के साथ।

0: श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। श्रोताओं, आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और अपने इस दोस्त को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी आज की सुहानी शाम आपको खुशियाँ दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम से आशीष सेंद्रे को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: गुड इवनिंग बालाघाट। श्रोताओं, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे, यह आकाशवाणी बालाघाट है। 7:05 होने जा रहे हैं। अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे अंग्रेजी में समाचार।
2: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर, रायरंगपुर में 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस का कार्यक्रम में शिरकत की, प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में सड़क सीवर निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन, 6-लेन फ्लाईओवर की भी घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। करीब 70 लाख पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज भी मिला है।
5: भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे आदिवासी पवित्र उपवनों और कौशल केंद्र में सहभागिता करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचेंगे, जहां वे पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे और 18,880 करोड़ रुपये की 23वीं पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि स्क्रीनिंग का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है।
6: पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने, शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे विश्वास है वर्ष 2047 से बहुत पहले ही देश में से सिकल सेल उन्मूलन की अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों में अवश्य सफल होंगे।
4: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर के तुलसीनगर क्षेत्र में सड़क और सीवर निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान में इंदौर ने देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस दौरान कनाडिया रोड से खजराना रोड तक लिंक रोड और पूर्वी रिंग रोड से रोबोट चौराहे तक 6-लेन फ्लाईओवर के निर्माण की घोषणा भी की गई।
7: कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है। ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से रोबोट चौराहे पर एक 6-लेन फ्लाईओवर 50 करोड़ की लागत से बनाने की घोषणा करता हूँ।
4: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जाँच करने की सलाह दी गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य

0: प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक दिवसीय बिहार दौरे के दौरान आज विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। पटना में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से बिहार के IT क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई और उद्यमियों और स्टार्टअप से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एस के जैन का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर लिया है। राज्यपाल ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कुलाधिपति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए कुलगुरु की नियुक्ति होने तक प्रबंध संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक शर्मा को कार्यवाहक कुलगुरु नामांकित किया है। धार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद रहीं। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं से गरीबों और महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है। सीधी जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती हमारी पहचान रही है और जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए इसे फिर से अपनाना होगा। प्रदेश में संस्कृति विभाग के द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर कला और संस्कृति का अनूठा उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्र और शिल्पकला से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री के आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन कल भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जाएगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉ. अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉ. श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रोफेसर और राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर डॉ. PN सनेसर को नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मानित किया। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर खरगोन और गुना में सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुना के कृषि विज्ञान केंद्र आरोन में आत्मा योजना के तहत प्राकृतिक कृषि आधारित कृषक संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पुनर्गठन की तैयारी के सिलसिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 सदस्यीय दल दिल्ली से शहडोल पहुंचा। भोपाल में एक पेड़ अपने बुजुर्गों के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के हज हाउस परिसर में वृक्षारोपण किया गया। जनजाति संग्रहालय में उत्तर प्रदेश की कोहबर चित्र परंपरा का अंकन शिविर 22 से 24 जून तक प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी में महिला हॉकी प्रशिक्षण के 10 दिवसीय आयोजन में शिवपुरी के साथ बिहार की महिला हॉकी टीम भी हिस्सा ले रही है। राजगढ़ जिले के माजपुर सेक्टर द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अशोकनगर में आयोजित 12 दिवसीय पर्यटन मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। मौसम में प्रदेश में 15 से 16 जून तक दस्तक देने वाला मानसून इस बार करीब 10 दिन की देरी से 25 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। जून माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल दौरे पर रायरंगपुर में 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में सड़क सीवर निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन, 6-लेन फ्लाई ओवर की भी घोषणा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 होने जा रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये गीत था हम है राही प्यार के फिल्म से। खूबसूरत आवाज़ दी थी साधना सरगम ने। गीत था समीर का, संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम सुनते हैं जुनून फिल्म का गीत। कुमार सानू की आवाज़ में गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया था फिल्म जुनून से। आवाज़ दी थी कुमार सानू ने। अब हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बालाघाट है। इस समय शाम के 7:30 होने जा रहे हैं। अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: और भैयानों, अब हम शुरू करते हैं आपकी पाती, आपके फिल्मी गीत. एक क्रम में जो है पहला गीत हम आफरों को सुनवा रहे हैं फिल्म उम्मीद से. स्वर है मोहम्मद रफी का, गीतकार है शकील बदायूं और संगीतकार है रवि. जय गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाइए इरशाद अनवर, सबा परवीन, युसरा अनवर, शरीम, शारिक, सना, शबीना, मुमताज, अर्शिया, मारिया और यूसुफ ने. इसके जय गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाइए घंटाघर चौक खंडवा से. चिट्ठिया आई है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की. आप सभी की पसंद पे अपन सब मिलकर सुनाते हैं जो गीत.

आदित्य आदिति शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने जय गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, कर्णव वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा ने और जय गीत की फरमाइश जय चिठिया जय गीत के लाने पहुंचाई है। फरमाइश करता है गौरीनगर इंदौर के आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। तो इन सब की फरमाइश पे अपन सुना थे जो गीत।

आपके पति आपके फिल्म गीत को अगलो गीत हमने लव है फिल्म पिया मिलन से। जगीत में स्वरदाव है हेमलता और रत्नेश ने, गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार भी रविंद्र जैन है, और जगीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली,

0: अगला गीत अब हम आप और गाने सुनवा रहे हैं फिल्म निकाह से। स्वर है महेंद्र कपूर को, गीतकार हसन कमाल और संगीतकार रवि। जागीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है भोपाल से इरशाद अनबर, सबा परवीन, युसरा अनबर, शरीम, शारिक, सना, मुस्तकिम, सबीना और इनके साथियों ने। पटेल नगर मलोड पंजाब से फरमाइश पहुंचाई है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिना। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अपन सुनाते हैं जो गीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

और भैया रूँ, अब जो है आपकी पाती आपके फिल्म गीत क्रम में अगला गीत हम आप को सुना रहे हैं, उनकी फिल्म को नाव है बनफूल। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। जय गीत की फरमाइश के लाने चिट्ठिया डारी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर ने। भाटापारा दतरंगी से चिट्ठिया लिखी द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा ने। जय गीत की फरमाइश के लाने एक और चिट्ठिया हमारे पास है, सपना संगीता रोड इंदौर से चिट्ठिया डारी है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो इन सब श्रोताओं की पसंद पे अपन सब मिलकर सुनते हैं जो गीत।

तो भैया आपने अभी जो बनफूल फिल्म को गीत सुना दो, और अब जो है अगलो गीत आपकी पाती आपके फिल्मी गीत क्रम में हम सुनवावे जा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, स्वर है आशा भोसले का, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। जय गीत केला ने फरमाइश भेजी है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, कर्णव वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। जय गीत की फरमाइश के लाने हमें चिट्ठियाँ भेजी है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पे अपन सभी मिलकर सुनाते हैं फिल्म तीसरी कसम को जो गीत है।

यारो फिल्म तीसरी कसम को जय गीत के संगे आपकी पाती आपके फिल्मी गीत क्रम जय संपन्न हो थे। और अब जो है ग्राम सभा भी संपन्न करवे के विधिया हो रही। मैंने चलत चलत हम आप भरों को बता दे तो जरूर कहना चाहें कि अगर हमारे किसान भाई NHBM यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि महाविद्यालय है या फिर जो कृषि विस्तार अधिकारी है ग्राम सेवक है उनसे जो है NHBM के बारे में चर्चा जरूर करें। कैसे कि जो ऐसी महत्वाकांक्षी मिशन है योजना है एक उद्देश्य वैज्ञानिक तौर पे मधुमक्खी पालन किसान भाइयों को करवाना है और शहद उत्पादन करवे में जो है एक तरह से मीठी क्रांति लाना है जो जो है केंद्र सरकार की मंशा है। तो हमारे किसान भाई जो है ये मिशन से जरूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और अब चलवे के भैया सगई किसान भैया बिन उनको महेश भैया की राम राम।

श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आशीष सेंद्रे। सभी श्रोताओं को नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना था कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में नगीना फिल्म से। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के इस गीत को। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, शब्दकार हैं वर्मा मलिक, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत। गीतकार थे वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में साहिबा फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है शिव हरी ने।

श्रोताओं, ये गीत था साईं बाबा फिल्म से। खूबसूरत आवाज़ दी थी अनुराधा पौडवाल ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी शिव हरि ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं राजा बाबू फिल्म का गीत। सुमधुर स्वर है पूर्णिमा का।

श्रोताओं, ये सुमधुर गीत था राजा बाबू फिल्म से। खूबसूरत आवाज आप सुन रहे थे पूर्णिमा की। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंत में सुनिए खलनायक फिल्म का ये गीत। सुरों से संवारा है मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों ने। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, ये गीत था खलनायक फिल्म से, जो कि हमारे कार्यक्रम का अंतिम गीत था। शुरू से संवारा था मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों ने। गीत था आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। आज की कलाकारा है श्वेता शेट्टी।

श्रोताओं, ये आवाज थी श्वेता शेट्टी की। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम, और पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता शेट्टी के गाए कुछ पॉप सॉन्ग। ये है कार्यक्रम का अगला पॉप सॉन्ग। गीत और संगीत है नितिन रायकवार का। आवाज आप जान ही चुके हैं श्वेता शेट्टी की।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का अंतिम पॉप सॉन्ग। गीत और संगीत नितिन राइकवार का, आवाज श्वेता शेट्टी की।

श्रोताओं, ये था आज का हमारा पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे थे श्वेता शेट्टी के गाए कुछ पॉप सॉन्ग।

0: ये आकाशवाणी बालाघाट है। इस समय रात के 8:45 होने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

0: अतः केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
4: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
3: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
5: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त

0: स्वराष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
1: दिस इज द कंट्री।
2: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्पॉटलाइट समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। अब हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृग्या के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: मिथुन की कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।
1: का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के

जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओ माय गॉड, यू आर इन लव।
1: हाँ यू आर इन लव।
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दिन भर।
1: आज के फनकार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: हो जाएं सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत बहुत बहुत आप सबका।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अजीत।
3: सुनते हैं आज का खूबसूरत विचार जो हमें भेजा है महाराष्ट्र वडनेर से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर जी ने। बहुत सुंदर विचार है।
1: विचार है, हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते।
3: जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम।
1: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदे।
1: और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीब।
3: बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी।
1: और गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल।
3: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, एक बार फिर से आ गई है हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से चर्चा की उन सब्जियों की जो भारत में इतनी लोकप्रिय हैं कि वो भारतीय ही लगती हैं।
3: जी,
1: लेकिन उनका मूल कहीं और है।
3: तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और सब्जी पत्ता गोभी की, और जानते हैं इसका इतिहास। आपको बता

0: हैं कि हमारी प्यारी प्यारी पत्ता गोभी या कैबेज भी भारत की मूल सब्जी नहीं है।
1: हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अब ये भारतीय कृषि और रसोई का अहम हिस्सा बन चुकी है
0: जी
1: और इसके उत्पादन में भारत उन देशों से बहुत आगे है जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है।
0: पत्ता गोभी के परिवार में फूल गोभी और ब्रोकली भी आती हैं। इसकी उत्पत्ति का मूल स्थान यूरोप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पत्ता गोभी की खेती सबसे पहले दक्षिण यूरोप यानी भूमध्य सागर के क्षेत्र में हुई थी।
1: अब जरा ये जानिए कि पत्ता गोभी भारत में कब आई। तो यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में 18वीं-19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा भारत आई
0: जी
1: और जल्दी ही बहुत लोकप्रिय हो गई। आज पत्ता गोभी भारत में एक प्रमुख सब्जी फसल है और पूरे देश में उगाई जाती है।
0: माना कि पत्ता गोभी भारतीय नहीं है बल्कि एक विदेशी फसल है, लेकिन ये आलू और टमाटर की तरह भारत में पूरी तरह से अपनाई जा चुकी है।
1: जी
0: आज ये देश के हर हिस्से में उगाई जाती है और बड़े चाव से खाई जाती है, इसलिए इसे अब भारतीय रसोई का हिस्सा जरूर कहा जा सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, अब ये तो बताइए कि वैज्ञानिक रूप से पत्ता गोभी क्या है?
0: जी जरूर श्रोताओं, पत्ता गोभी न तो टमाटर और भिंडी की तरह एक फल है न आलू की तरह तना। पत्ता गोभी वैज्ञानिक रूप से मात्र एक पत्ता है।
1: जी, पत्ता गोभी वैज्ञानिक रूप से मात्र एक पत्ता
0: पत्ता
1: है,
0: है
1: तो इसलिए शायद इसका नाम पड़ा पत्ता गोभी।
0: बिल्कुल।
1: और अब श्रोताओं, आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, और हमारा प्रश्न है, पत्ता गोभी किस सदी या शताब्दी में भारत आई और इसे भारत लाने वाले कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पत्ता गोभी किस सदी या शताब्दी में भारत आई और इसे भारत लाने वाले कौन थे?
1: audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता, और 8800-440-559 है हमारा IVRS नंबर।
0: आप इन पतों पर अपना संदेश भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाबा।
1: श्रोताओ, ये NCERT की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम है जो पारिवारिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है।
2: हेलो बच्चों।
3: हेलो अंकल जी।
2: अच्छा, मेरे नाम का मतलब बताओ। अंकल
3: गेम।
2: बच्चों बच्चों, आज हम एक नया खेल खेलेंगे जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा। क्या नाम है?
3: बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा।
2: अच्छा, आपका क्या नाम है?
4: गुड़िया।
2: गुड़िया, तो गुड़िया आप बनेंगी बूढ़ी अम्मा। अच्छा, बूढ़ी अम्मा कैसे चलती है? झुक के चलती है ना?
4: हाँ,
2: कमर पे हाथ रखा होता है, एक लाठी हाथ में पकड़ी हुई होती है। अच्छा, आप जरा करके दिखाओ, चल के दिखाओ बूढ़ी अम्मा के जैसे। अरे वाह, क्या एक्टिंग किया। ठीक है, तो अब बच्चों, जो मैं बोलूंगा वही सवाल आप सब बूढ़ी अम्मा से पूछेंगे। ठीक है, सवाल वही बोलना है जो मैं बोलूंगा। सवाल क्या है? बूढ़ी अम्मा जंगल में क्या ढूंढ रही हो? बोलो।
3: बूढ़ी अम्मा जंगल में क्या ढूंढ रही हो?
2: और गुड़िया, अब आप इनको जवाब देंगी, मेरी गाय खो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ।
4: मेरी गाय खो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ।
2: अरे वाह वाह, शाबाश। बच्चों, अब तुम अम्मा से पूछो, गाय का क्या करोगी?
3: गाय का क्या करोगी?
2: अब गुड़िया तुम जवाब दो, दूध निकालूंगी।
4: दूध निकालूंगी।
2: ऐसे। अच्छा बच्चों, अब तुम पूछो, दूध का क्या करोगी?
3: दूध का क्या करोगी?
2: अब गुड़िया तुम बोलो, दही जमाऊंगी।
4: दही जमाऊंगी।
2: अरे वाह वाह। अब बच्चों तुम पूछो, दही का क्या करोगी?
3: दही का क्या करोगी?
2: गुड़िया यानी बूढ़ी अम्मा तुम बोलो, मक्खन निकालूंगी।
4: मक्खन निकालूंगी।
2: बच्चों अब तुम क्या पूछोगे? मक्खन का क्या करोगी?
3: मक्खन का क्या करोगी?
2: अरे घी बनाऊंगी।
4: अरे घी बनाऊंगी।
2: तो बच्चों, जब घी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम क्या करोगे? घी तो हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। बोलो बोलो।
3: घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे।
2: घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। अच्छा बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा घी ये बच्चे सारे लेके खा जाएंगे तो तुम इनके साथ में क्या करोगी? इनको डंडा मारोगी ना? तो मारो डंडा इनको, डंडा मारो, भागो भागो भागो भागो भागो। घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। घी को हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। ये पड़ा डंडा।

0: किसको पढ़ाइए डंडा?
1: मोनू।
2: मोनू, तो अब मोनू आप बूढ़े बाबा बनोगे, ठीक है? ठीक है, और बाकी सब बच्चे बूढ़े बाबा से वही सवाल पूछेंगे जो बूढ़ी अम्मा से पूछे थे। जोरदार तालियां। ये बूढ़े बाबा बन गए। तो अब बूढ़े बाबा से सवाल क्या पूछेंगे, पहला सवाल क्या पूछेंगे सारे बच्चे? बूढ़े बाबा जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? जोर से फिर से बोलो। तो बूढ़े बाबा क्या जवाब देंगे?
3: मेरी गाय खो गई है, उसे ढूंढ रहा
2: हूं। अब बच्चे क्या पूछेंगे? गाय का क्या करोगे?
3: दूध निकालूंगा।
2: दूध का
4: क्या करोगे?
3: दही जमाऊंगा।
4: दही का क्या करोगे?
3: मक्खन निकालूंगा।
4: मक्खन का क्या करोगे?
3: घी बनाऊंगा।
2: तो अब बच्चे क्या बोलेंगे? तुम्हारा घी हम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। अरे बाबा, तुम्हारा घी चोरी हो रहा है, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे अरे, किसको लगा डंडा? ये लगा डंडा। तो उमंग सुनने वाले सारे बच्चों, आप भी इस खेल को खेलें और भरपूर मजा उठाएं।
5: बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा। अभी आप सुन रहे थे ये खेल कार्यक्रम। कलाकार बाबला कोचर और बच्चे, ध्वनि अंकन बटी लैंग लिंगडो, निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
6: तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? और अब सुनते हैं सुर ताल और गीत में निबद्ध ये अंग्रेजी भजन।
5: CIET NCERT presents भजन।

0: are above of all. You were just listening to this bhajan. Special gratitude to Rajesh Kumar Nimesh, music composer Harbhajan Singh, singers Neha Khankhariyal, Megha Sharma, Abha Tiwari, Mohammad Shabbir, Anushri, Rahul, Abhishek Tiwari and Vivek Singh Negi. Technical direction Bati Langlindo, sound recordist Mayank Kumar and Shanu Muksim. Assistance in production by Tanu Gupta, Jagbandhu Jana and Meenakshi Kukreti. Written, directed, edited and produced by Vandana Arimardhan. This program is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
1: आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये नया प्रयोग अवश्य पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऋतुओं पर।
2: कार्यक्रम का शीर्षक है ऋतुएं।
3: सूरज तपता धरती जलती गर्म हवा जोरों से चलती। सूरज तपता धरती जलती गर्म हवा जोरों से चलती। तन से बहुत पसीना बहता, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, हाथ सभी के पंखा रहता।

बादल काले बादल गर्मी दूर भगा रे बादल रिमझिम बूंदे बरसा बादल रिमझिम बूंदे बरसा बादल झमझम पानी बरसा बादल झमझम पानी बरसा बादल लू घन घोर घटाएं छाई टप टप टप टप बूंदे आई लू घन घोर घटाएं छाई टप टप टप टप बूंदे आई बिजली चमक रही अब चमचम बिजली चमक रही अब चमचम लगा बरसने पानी झमझम लगा बरसने पानी झमझम लेकर अपने साथ दिवाली सर्दी आई बड़ी निराली लेकर अपने साथ दिवाली सर्दी आई बड़ी निराली शाम सवेरे सर्दी लगती पर स्वेटर से है वह भगती शाम सवेरे सर्दी लगती पर स्वेटर से है वह भगती सर्दी जाती गर्मी आती रंग रंग के फूल खिलाती सर्दी जाती गर्मी आती रंग रंग के फूल खिलाती रंग रंगीली होली आती रंग रंगीली होली आती सबके

मन उमंग भर जाती, सबके मन उमंग भर जाती। रात और दिन हुए बराबर, रात और दिन हुए बराबर। सोते लोग निकलकर बाहर, सोते लोग निकलकर बाहर। सर्दी बिल्कुल नहीं सताती, सर्दी बिल्कुल नहीं सताती। सर्दी जाती गर्मी आती, सर्दी जाती गर्मी आती।

0: आइए अब चलते हैं
1: प्राचीन से भी अधिक अति प्राचीन काल में, जब हिमयुग समाप्त हुआ और मानव सभ्यता शुरू हुई। और जानते हैं कैसे थे आदि मानव, यानी हमारे सबसे पहले के पूर्वज।
0: क्या करते थे वे और कैसे चलता था उनका जीवन,
1: कैसे और कहाँ रहते थे वो, आइए सुनते हैं ये इतिहास गीत प्रारंभिक मानव।

कंद मूल फल खा लेते थे और किया करते शिकार। दूर दूर तक घूमा करते पाने को अपना आहार।

नहीं हुआ करते थे तब घर और न होते थे औजार, अंधेरी गुफाओं में सोते थे, पत्थर थे उनके हथियार।

0: दिखाऊं।
1: कैसे उग जाता है पौधा, रात को क्या सूरज भी सोता, क्यों जंगल में लगती आग, देख जिसे सब जाते भाग।

0: आदि मानव, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। तो श्रोताओं, कैसी लगी आदि मानव पर यह जानकारी?
1: जी,
0: जरूर अच्छी लगी होगी। तो आइए अब अंत में सुनते हैं एक छोटा लेकिन मनोरंजक कार्यक्रम।
1: शीर्षक है छोटी

0: छोटी सी चीज। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब विमलेश को अजीत जी और उमंग की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। श्रोताओं, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 10:30 हुए हैं। अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये खूबसूरत गीत था अनुरोध फिल्म से। आवाज दी थी किशोर कुमार ने, बोल लिखी थी आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी आर डी बर्मन ने। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अखियों के झरोको। श्रोताओं, इसे फिर से सुन लीजिए, अखियों के झरोके से फिल्म से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज दी है हेमलता ने, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

अखियों के झरोकों से। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ दी थी हेमलता ने, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत। आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, ये सुमधुर गीत था प्यार झुकता नहीं फिल्म से। आवाज़ें दी थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। गीतकार थे एसएच बिहारी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का हम समापन करने जा रहे हैं मेरा साया फिल्म के इस गीत से। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस समय रात के 11 बजने को हैं। अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस

0: कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel